सुप्रभात। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तिथि 6, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026 ईस्वी। आज का दिन हम सबों के लिए मंगलमय हो। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 37 सेकंड हो रहे हैं। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और

0: लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:05 और 4 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है अपना दुख, स्वर मन्मथनाथ मिश्र का।

जोसिबा नाम की एक संत थी। सदा प्रभु की प्रार्थना किया करती थी। परमात्मा में उनका अखंड विश्वास था। उनकी सांस सांस में वही विराजती थी। लाख विघ्न आए, बाधाएं आए, विपरीत परिस्थितियां आए, उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता था। मनुष्य है तो नाना प्रकार के कष्ट भी हैं। देहधारी को दंड भोगना ही पड़ता है। कोई हंसकर भोगता है, कोई रोकर भोगता है। कबीर कहते हैं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी जानता है कि मनुष्य शरीर धारण करने वाले को ये भोगना ही पड़ता है, नहीं है कोई उपाय इससे बचने का। परंतु भूखे जन हाय तौबा मचा देते हैं, परमात्मा को कोसने लगते हैं, क्या दुख दे दिया भगवान आपने, सहा नहीं जाता है। भक्त को रहता है भरोसा भगवान पर कि वही सब कुछ पार लगाएंगे, वही हैं खेवनहार, भवसागर से पार वही उतारेंगे, वहां दुख से छुटकारा पाना कौन सी बड़ी बात है। एक दिन जोसिबा सोचने लगे, हे प्रभु, इतना भजता हूं आपको, क्षण भर के लिए भी मेरा ध्यान दूसरी ओर नहीं भटकता है, फिर भी आपकी मुझ पर कृपा कहाँ होती है, दुख से छुटकारा कहाँ मिलता है। मैं तो अपने दुख की पोटली सिर पर लादे चलता रहता हूं, मेरी पोटली न ले सकें, दुख से निवृत्ति न दिला पाएं, इतना तो कर दें कि मेरा दुख दूसरे के दुख से बदल दें, कुछ तो राहत मिलेगी। अपना दुख भोगते भोगते ऊब गया हूं प्रभु। रात को सोने के पहले जोसिबा यही सोचते रहे, फिर प्रार्थना की और निद्रा मग्न हो गए। प्रातःकाल सूर्य पूर्वी क्षितिज पर प्रकट होने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और सोचा कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रभु के प्रति एक प्रणाम भर रह जाए, तभी उसके जन्म लेने की सार्थकता है। इसी समय बाहर डुगडुगी पीटने की आवाज आने लगी। संत चौंके, कितने प्रातःकाल डुगडुगी पीटने का क्या सबब हो सकता है। डुगडुगी पीटने वाला

0: जोर जोर से घोषणा कर रहा था, भाइयों बहनों सभी उम्र के लोगों, सुनो सुनो शाही फरमान, ध्यान से सुनो। आज अपराह्न 4 बजे सार्वजनिक सभागार में सब लोग जुटें। जिन्हें अपने दुख की पोटली भारी लग रही है, वे अपनी पोटली दूसरे की पोटली से बदल सकते हैं। ध्यान रहे, ठीक 4 बजे सार्वजनिक सभागार में आ जाएं। संत यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुए कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। इसीलिए तो अपना अपना दुख विनिमय करने की घोषणा हो गई। उन्होंने प्रभु के प्रति आभार प्रकट किया। 2 बजे दिन से ही लोग सभागार की ओर दौड़ने लगे। सबकी पीठ पर एक एक पोटली थी। सभागार में घुसते ही लोग दौड़कर किसी खूंटी में अपनी पोटली टांग देते थे और अन्य पोटलियों का भी मुआयना कर लेते थे कि किस पोटली से बदलना उपयुक्त होगा। सभागार में पर्याप्त जगह थी, दीवाल में काफी खूंटियां थीं। समय होते होते सभागार खचाखच भर गया, खूंटियां पोटलियों से भर गई। सबकी नजरें दूसरे की पोटलियों पर लगी थी कि बदलने में चूक न हो जाए, कि अपने से अधिक भारी पोटली हाथ न लग जाए। ठीक 4 बजे मंच से घोषणा हुई। सभी अपनी इच्छा अनुसार पोटली बदल सकते हैं। सभी अपनी अपनी पोटली की ओर भागे कि वह कोई दूसरा न ले ले। पता नहीं दूसरे की पोटली में क्या है। अपनी पोटली ढोने का वर्षों से अभ्यास है, दूसरे की पोटली उठा न पाए तो। देखते देखते ही सभागार खाली हो गया, खूंटियां खाली हो गई। लोग अपनी अपनी पोटली पीठ पर लादे प्रसन्न चित्त लौट रहे थे, मानो दिग्विजय कर लौटे हैं। संत पछता रहे थे कि उसे क्या सूझी कि ऐसी प्रार्थना कर दी। दूसरी ओर उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी, सत्य से साक्षात्कार करा दिया। अपना दुख ही सही है, उसी को सहने का अभ्यास हो। निश्चिंत होकर मनुष्य प्रभु का स्मरण करे, सुख दुख के झमेले में न पड़े।
1: अपना दुख शीर्षक से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:11 हो चुके हैं। आइए शामिल होते हैं ईश्वर भक्ति में। कार्यक्रम है वंदना।

लता मंगेशकर को आपने सुना। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना एफएम हजारीबाग से। लिए प्रोग्राम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया हुआ ये भक्ति रचना।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना ही समाप्त होता है। वंदना, अभी आप सुने थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड 75, 75।

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए डालते हैं एक नजर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के ऊपर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग काव्यधारा। इसके तहत आप सुनेंगे कुछ कविताएं सुबह 7:20 पर। अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत होगा सुबह 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 8:45 का वक्त है मॉर्निंग मेलोडी का। सुबह 9 बजे हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। सुपहर 3 बजे हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। और 5:02 से आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। और शाम 6:02 से आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार, खेलेंगे शान से। खेल गतिविधि पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। रात 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। और 9 बजे आप सुनेंगे News@9 हमारे दिल्ली केंद्र से। स्पॉटलाइट ये प्रोग्राम सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात 9:15 पर। 9:30 पर हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। और रात 10 बजे आप सुनेंगे रजनीगंधा। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रोजाना की तरह रात 11:10 पर आज की सभा का समापन होगा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:54 हो चुके हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

लाल बहरी साहू को आपने सुना, आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग एफएम हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुना रहे हैं शिवनंदन पांडे गरीब और साथियों की आवाज में ये खोरठा लोकगीत।

0: लोकरंग अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का हमारे कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य धारा के तहत सचिन कुमार की कविताएं, उन्हीं की जुबानी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव में मैं आज अपनी कविताओं के साथ हाजिर हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है, मैं विजयी होकर आऊंगा। यह कविता हमारे देश के सुरक्षा बलों को समर्पित है। हमारे देश ने कुछ महीने पहले ही आजादी का 75वां वर्ष पूरा किया है। चाहे आजादी के लिए लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद देश को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई, हमारे सुरक्षा बलों ने हमेशा दुश्मनों से न सिर्फ लोहा लिया है बल्कि उन्हें हर दफा धूल चटाई है। मेरी यह कविता उन्हीं वीरों के त्याग और वीरता की एक छोटी सी तस्वीर बयां करती है। इस कविता में मैंने एक सैनिक और उसके परिवार के बीच हुए संवाद को दर्शाने की कोशिश की है। कविता के पहले भाग में युद्ध में जाने से पहले जवान, उसकी मां, धर्मपत्नी और पिता के बीच हुए संवाद को अंकित किया गया है। कविता है, मैं विजयी होकर आऊंगा। मैया तेरे लाडले को भारत मां ने पुकारा है। मैया तेरे लाडले को भारत मां ने पुकारा है। नाद हुआ है समर संघ का, अवरण होने वाला है। तेरे आंसू को मैं मैया अब की बार पोछूंगा। तेरे आंसू को मैं मैया अब की बार पोछूंगा। आऊंगा लौट कर फिर तेरी गोद में सोऊंगा। मैया अपने लाडले को वस्तु इतना दे आशीष। मैया अपने लाडले को वस्तु इतना दे आशीष। रणभूमि में भारत माँ का झुकने ना दो जरा भी शीश। बजरंगी का भक्त हूं मैं, बजरंगी बन जाऊंगा। तेरे आशीष से मैं मैया विजय होकर आऊंगा। तेरे आशीष से मैं मैया विजय होकर आऊंगा। आगे की पंक्ति में जवान अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है जो उसके युद्ध में जाने से नाराज है। वह नहीं चाहती है कि उसका सुहाग इस भयंकर युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाए। वह इस बात से भी नाराज है कि उन्हें कुछ दिन ही हुए थे आए और वापस जा रहे हैं। अपनी नाराज पत्नी को मनाते हुए जवान कहता है, अश्रु भरे ये नैन तुम्हारे तुझ पे जरा नहीं भाते। अश्रु भरे ये नैन तुम्हारे तुझ पे जरा नहीं भाते। फौज हो के प्राण प्रिया ऐसे नहीं घबराते। माना तुम नाराज हो, माना तुम नाराज हो, सिकवे हैं मुझसे 1000। कुछ दिन की तो बात है प्रिय, करना तुम मेरा इंतजार। माना तुम नाराज हो, सिकवे हैं मुझसे 1000। कुछ दिन की तो बात है प्रिय, करना तुम मेरा इंतजार। सीता भी तो रही अकेली दूर अविरल वन में। सीता भी तो रही अकेली दूर अविरल वन में। आते हैं कुछ वक्त ऐसे सकल मानुष जीवन में। क्या तुमको अपने सिंदूर पर जरा भी विश्वास नहीं है। जो मेरा लहू सोख ले धरा में ऐसी आग नहीं है। क्या तुमको अपने सिंदूर पर जरा भी विश्वास नहीं है। जो मेरा लहू सोख ले धरा में ऐसी आग नहीं है। प्रेसी तुम आओगी याद जब मैं रण में जाऊंगा। प्रेसी तुम आओगी याद जब मैं रण में जाऊंगा। करो शुभ तिलक मेरा मैं विजय होकर आऊंगा। करो शुभ तिलक मेरा मैं विजय होकर आऊंगा। आखिर में जब वो अपने पिता से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने जाता है तो उनके पिता की आंखों में आंसू होते हैं। ये आंसू डर के नहीं बल्कि गर्व के होते हैं। पूरे घर में एक वो ही है जो अपने बेटे के युद्ध में जाने से डर नहीं रहे हैं। वो उसे युद्ध से संबंधित बातें बताते हैं और अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि माटी का कर्ज अदा करने एक शेर का बेटा जा रहा। माटी का कर्ज अदा करने एक शेर का बेटा जा रहा। बेटा तेरे जाने से मैं किंचित नहीं घबरा रहा। माटी का कर्ज अदा करने एक शेर का बेटा जा रहा। बेटा तेरे जाने से मैं किंचित नहीं घबरा रहा। तेरा लहू लहू नहीं है ये खुद में एक ज्वाला है। तेरा लहू लहू नहीं है ये खुद में एक ज्वाला है। इस दिन की खातिर ही बेटा मैंने तुझको पाला है। जितनी गर्मी जलते सूरज के सोलों में है उससे कहीं ज्यादा तेरे इन बाहुबली डोलों में है। तेरे फौलादी सीने से दुश्मन जब टकराएगा। तेरे फौलादी सीने से दुश्मन जब टकराएगा बाल ना बांका होगा तेरा वो वहीं तड़प मर जाएगा। तेरे फौलादी सीने से दुश्मन जब टकराएगा बाल ना बांका होगा तेरा वो वहीं तड़प मर जाएगा। बेटा दुश्मन क्रूर बड़ा है रण होगा अब की बहुत भयंकर। बेटा दुश्मन क्रूर बड़ा है रण होगा अब की बहुत भयंकर। दिखला देना सौर्य अपना जैसे लड़ता शेर बब्बर। घिर जाओ जो दुश्मन से तुम तनिक ना घबराना। अभिमन्यु की अमर गाथा तब अंतर मन में दोहराना। रणभूमि में जब जाओ कर्ण तुम बन जाना। रणभूमि में जब जाओ कर्ण तुम बन जाना। किंतु अर्जुन की भांति तुम विजय होकर आना। किंतु अर्जुन की भांति तुम विजय होकर आना। कविता में दूसरे भाग को अंकित किया गया है जब वह जवान युद्ध जीतकर तिरंगे को लहराकर अपने घर को आता है और सभी उसके स्वागत की तैयारी में दरवाजे पर खड़े होते हैं। इसी दरमियान राखी का त्योहार बीत गया होता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा व्याकुल उसकी बहन होती है अपने भाई के कलाई में हाथ राखी बांधने को, और उसके आते ही कहती है कि जब भी तुम जाते हो सब कुछ भूल जाते हो, जब भी तुम जाते हो सब कुछ भूल जाते हो, तीज त्योहारों में भी भैया घर नहीं आते हो। भैया अब तुम आ गए हो तिरंगे को लहरा कर, भैया अब तुम आ गए हो तिरंगे को लहरा कर, देखो तेरे खातिर अब तक रखी हूं राखी बचाकर। ये सुंदर राखी भैया आज तेरे करों में सजेगी, हमारी राखी अब की बार भादों में मनेगी। लाओ भैया लाओ, अपने हाथों को आगे लाओ, तोहफे में क्या लाए हो ये पहले बतलाओ। सुनकर बहना की बातों को आंखों से पानी आया, सुनकर बहना की बातों को आंखों से पानी आया, उसने उसने रोते रोते अपने अर्धकरों को दिखलाया। बहना तेरी राखी के हाथों को मैंने गवा दिया, भारत माँ के श्री चरणों में अपना हाथ चढ़ा दिया। इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पे थोड़ा सा है अदा किया, मैंने तो है हाथ गवाए कितनों ने शीश चढ़ा दिया, मैंने तो है हाथ गवाए कितनों ने शीश चढ़ा दिया। और जब अपने पिताजी को रोते देखता है तो उनका छोटा सा बेटा अपने पिताजी को सहारा देते हुए कहता है कि पापा तुम रोओ नहीं मैं रोटी तुम्हें खिलाऊंगा, पापा तुम रोओ नहीं मैं रोटी तुम्हें खिलाऊंगा, मैं धो दूंगा कपड़े आपके, मैं आपको नहलाऊंगा, और बदले में तुम काम मेरा एक कर देना, बदले में तुम काम मेरा एक कर देना, मेरे खातिर इस बार एक बंदूक तुम ला देना, और साथ में फौज वाली वर्दी भी तुम लाना, रणभूमि के सारे दांव मुझको तुम सिखलाना, और साथ में फौज वाली वर्दी भी तुम लाना, रणभूमि के सारे दांव मुझको तुम सिखलाना। लगाऊंगा ऊंची छलांग मैं दीवारों पर चढ़ जाऊंगा, बाहुबल से मैं अपने दुश्मन को मार गिराऊंगा, मैं भी लगाऊंगा निशाने फौजी मैं बन जाऊंगा, रण में जाऊंगा मैं भी और विजय होकर आऊंगा, रण में जाऊंगा मैं भी और विजय होकर आऊंगा। मैंने दूसरी कविता हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे के ऊपर लिखी है। इसमें मैंने तिरंगे के बारे में लिखने की कोशिश की है कि तिरंगा हम भारतीयों के लिए क्या मायने रखता है। इस कविता का शीर्षक है भारत माँ की शान तिरंगा। भारत माँ की शान तिरंगा वीरों का अभिमान तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा वीरों का अभिमान तिरंगा, दुनिया हमें इससे पहचानती हम सब की पहचान तिरंगा, दुनिया हमें इससे पहचानती हम सब की पहचान तिरंगा, कई कहानी समेटे खुद में शहीदों का बखान तिरंगा, सारे वीर शहीदों के खातिर सबसे बड़ा सम्मान तिरंगा, सारे वीर शहीदों के खातिर सबसे बड़ा सम्मान तिरंगा, इसके सामने सब छोटे, इसके सामने सब छोटे, सबसे पहले महान तिरंगा, पूछो किसी सैनिक से जाकर धड़कन उसकी प्राण तिरंगा, और खेतों की हरियाली जिससे, खेतों की हरियाली जिससे, भारत का हर किसान तिरंगा, और लाल लहू से लिख दे केसरी, लाल लहू से लिख दे केसरी सीमा का हर जवान तिरंगा, लाल लहू से लिख दे केसरी सीमा का हर जवान तिरंगा, और सादगी लोगों के दिल की, और सादगी लोगों के दिल की, है पूरा हिंदुस्तान तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा वीरों का अभिमान तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा वीरों का अभिमान तिरंगा। मेरी आखिरी कविता का शीर्षक है एक कविता में कहां भारत यह समाएगा। इस कविता में मैंने भारत और इसकी खूबसूरती को चित्रित करने की कोशिश की है। कविता कुछ इस प्रकार है, एक कविता में कहां भारत यह समाएगा। कलम उठाई भारत लिखा, लिखा पेड़ पहाड़ों को, कलम उठाई भारत लिखा, लिखा पेड़ पहाड़ों को, फिर लिखा गांधी को मैंने और बोस के दहाड़ों को। सरोजनी के कविताओं से मैंने कई पन्ने भरे, फिर लिखा उन वीरों को जो देश के खातिर मिटे मरे। सरोजनी के कविताओं से मैंने कई पन्ने भरे, फिर लिखा उन वीरों को जो देश के खातिर मिटे मरे। लिख रहा हूं उन वीरों को जिन पर भारत को नाज है, लिख रहा हूं उन वीरों को जिन पर भारत को नाज है, सीमा पर जो सिंह खड़े हैं आसमां में जो बाज हैं। लिख रहा हूं उन वीरों को जिन पर भारत को नाज है, सीमा पर जो सिंह खड़े हैं आसमां में जो बाज हैं। अब लिखता हूं पूरब के बगानों को और पश्चिम में लहलहाते खलिहानों को, कश्मीर को स्वर्ग लिखा जन्नत को अब मैं क्या लिखूं, कश्मीर को स्वर्ग लिखा जन्नत को अब मैं क्या लिखूं, आसमां से ऊंचे ऊंचे पर्वत को अब मैं क्या लिखूं, सबसे पहले लिख लूं मैं

0: पूरा पन्ना भरने को है, खत्म हुई स्याही मेरी पर बहुत कुछ कहने को है। खत्म हुई स्याही मेरी पर बहुत कुछ कहने को है, मैं भी ठहरा पागल, मैं भी ठहरा पागल, समंदर भला घड़े में आएगा, एक कविता में कहां भारत यह समाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे सचिन कुमार की कविताएं, कार्यक्रम था काव्य धारा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। पेश खिदमत है अगार फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, हम आपको सुना रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

असल निगम को आपने सुना। आप सुन रहे हैं अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत FM हजारीबाग से। लीजिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं अली शाह शुना की आवाज में।

गीत संगीत अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। आइए वहां आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज अंक। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-23088718 और 9111-23088719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261317। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे।

0: एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
4: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
5: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
6: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
7: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
6: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रहीं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वाले मतदाताओं की जांच करने का दिया निर्देश। देशभर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड ने मिजोरम को 2-0 से पराजित कर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन पर राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी से कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कल सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एससीबी 5 नवंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। गौरतलब है कि पैनम माइंस नाम की कंपनी को 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन की लीज दी थी, लेकिन उसने लीज से अधिक खनन किया जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। झारखंड हाईकोर्ट ने 2010 में हजारीबाग में एनटीपीसी के परियोजना कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े आपराधिक मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री योगेंद्र साव को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि इस बात का कोई विशिष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है कि उन्होंने किसी पर हमला किया था या भीड़ को उकसाया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के उन निष्कर्षों को रद्द कर दिया जिनमें योगेंद्र साव को दोषी ठहराया गया था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में सीआईडी ने 2 आरोपियों सोमांश प्रकाश और उसके सहयोगी राहुल कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सीआईडी की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों वर्तमान में दिल्ली में रह रहे थे। सीआईडी के अनुसार सोमांश प्रकाश जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यों से जुड़ा था। जांच के दौरान उसके सहयोगी राहुल कुमार की भूमिका भी सामने आई थी। खान और खनिज संशोधन अधिनियम पर प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम का पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है।
1: झारखंड में सरकार ने शेष के नाम पर जो लूट मचा कर रखी है, बीसीसीएल का कितना हालत लोगों ने बिगाड़ दिया है, इतनी बड़े पैमाने में चोरी हो रही है। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अगर केंद्र की सरकार बीसीसीएल को पैसा नहीं दे तो वहाँ के कर्मचारियों का भुगतान वहाँ के रेवेन्यू से नहीं हो पाए। झारखंड में बार बार जनता को गुमराह करना या मुद्दे को भटकाना चाहता है।
0: वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एमएमडीआर संशोधन के विरोध को झारखंड के संवैधानिक अधिकार, राजस्व, आदिवासी हित और खनिज संपदा की रक्षा की लड़ाई करार दिया है।
2: इससे हमारे झारखंड को राजस्व की काफी क्षति होने जा रही है, इसलिए हम लोग इसको सड़क से सदन तक ये आवाज उठाने का काम करेंगे। आगामी 7 सितंबर को लोकभवन में हम लोग इस तरह रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे और 9 से लेकर 16 तारीख तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में ये कार्यक्रम होगा।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक ही खतियान से जुड़ी वंशावली वाले मतदाताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसआईआर की समीक्षा के दौरान कहा कि होम टू रोल सत्यापन, एक परिवार एक मतदान केंद्र, नए पात्र भारतीय नागरिकों के पंजीकरण, नो मैप और तार्किक विसंगति वाले मामलों के नियम अनुसार निष्पादन को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार या एक ही घर के मतदाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर सूचीबद्ध हैं तो उन्हें उनके नजदीकी और एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज देशभर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। इधर रांची के नामकुम स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की चार छात्राएं रोशनी लकड़ा, विभा कुमारी, नेहा कुमारी और सिमरन आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को राखी बांधेंगी। रांची नगर निगम बोर्ड ने शहर के विकास, नगर निगम की व्यवस्था, जलापूर्ति, सफाई, राजस्व और बाजार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य कराने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि शहर को व्यवस्थित करने के लिए निगम स्तर पर कई आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
1: बैठक में बहुत सारे एजेंडों को लाया गया है। बकरी बाजार का जो अभी एरिया है, जो स्टोर है, उस स्टोर को हमने शिफ्ट करने को कहा है और उसे शिफ्ट करके जो आप देख रहे होंगे बिरसा मुंडा पार्क के सामने में ट्रैकर स्टैंड है, उसके पीछे बहुत जमीनें हैं, तो उसे हमें वहां पर हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कल चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सैकड़ों युवाओं के साथ संवाद किया। वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने खिलाड़ियों से वर्ष 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को आज से ही तैयारी करने को कहा। युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और नशे से बचने की सलाह दी।
2: मोदी जी ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और खेल को लेकर हमें अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए, साथ ही साथ नशा मुक्ति से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि आज नशा जो है युवाओं को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है, जिससे हमारा देश का भविष्य खतरे में आ सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल जो है हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों ही चीजों को डेवलप करता है और हमें पढ़ाई और साथ ही साथ अपने को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करता है।
0: नई दिल्ली में कल 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की संत पैट्रिक स्कूल गुमला की टीम ने मिजोरम की एनसीसी टीम को 2-0 से हरा दिया और तीसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पूरी टीम को बधाई दी है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में आई भीषण तबाही और दोबारा आने वाले संभावित बाढ़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। प्रभात खबर ने नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में रांची निवासी रामप्रसाद घोष के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने JSSCGL मामले में दिल्ली से दो आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान ने CISF के 3 अधिकारियों को घूस लेते गिरफ्तार किए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन मामले की SCB से जांच कराने का दिया आदेश। राज्य सरकार के जवाब पर जताया असंतोष। CID ने JSSCGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में 2 आरोपियों सोमांश प्रकाश और उसके सहयोगी राहुल कुमार को दिल्ली से किया गिरफ्तार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक ही खतियान से जुड़ी वंशावली वाले मतदाताओं की जांच करने का दिया निर्देश। देशभर में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड ने मिजोरम को 2-0 से हरा कर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आपके साथ है आपका दोस्त विनोद। बने रहे हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के साथ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम का गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
3: अरे?
2: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात।

संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मॉर्निंग मेलोडी, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं बता दें आपको कि आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर। और आज है नारियली पूर्णिमा। महाराष्ट्र में विशेष रूप से समुद्र तट से जुड़े समुदायों का महत्वपूर्ण पर्व है नारियली पूर्णिमा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र और भगवान वरुण की पूजा कर नारियल अर्पित किया जाता है तथा सुरक्षित

से समुद्री यात्रा और अच्छी आजीविका की प्रार्थना की जाती है। लक्की फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वरों में, समीर के बोल, अदनान सामी का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर

0: 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

कबीर सिंह इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के बोल सचेत परंपरा की बनाई धुन।

0: श्रोताओं, बलभद्र पूजा मुख्य रूप से भगवान बलभद्र यानी बलराम की आराधना का पर्व है। बलराम जी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति, पराक्रम, कृषि तथा धरती से जुड़े जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त बलभद्र जी की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बलराम जी का हल उनका प्रमुख प्रतीक है, इसलिए यह पर्व कृषि, श्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: चित्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त एक अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल, इस फिल्म का गीत मीट ब्रदर्स और अल्तमश फरीदी की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल हैं और धुन बनाई है मीट ब्रदर्स ने।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं पीकू फिल्म से गीत। इस गीत के संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार अनुपम रॉय हैं।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं जुग जुग जियो इस फिल्म से। तनिष्क बागची और जहरा एस खान की आवाजें हैं। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची।

जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बधाइयां और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: इसने दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। सो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुरी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: रिशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में रिशिदा का जो योगदान रहा है उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने रिशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में रिशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

निशिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन हो।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे तमाम दोस्तों श्रोताओं का स्वागत है। आप ही के इस कार्यक्रम में एक घंटे के इस दिलचस्प रोचक जानकारियों एवं संगीत में कार्यक्रम में आज आपके साथ में अली शब्बीर। कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन बड़े जोशो खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है। बधाइयां और शुभकामनाएं हो आप तमाम भाई बहनों को।

दोस्तों, कार्यक्रम में आज भी हमने शामिल किया है आज के सुविचार को। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन वो सिखाने से पहले परीक्षा ले लेता है।

दोस्तों आज 28 अगस्त की तारीख है और आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आइए कुछ चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा का गौरव और आधुनिक समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन समृद्ध और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। इसे देव भाषा या सूर्य भारती भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति दर्शन और ज्ञान का मूल आधार संस्कृत में ही निहित है। आधुनिक युग में भी संस्कृत की महत्ता कम नहीं हुई है बल्कि नए रूपों में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। दोस्तों संस्कृत भाषा का गौरव के संदर्भ में हम बात करें तो ये ज्ञान का अक्षय भंडार है। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण और आयुर्वेद जैसे महान ग्रंथ इसी भाषा में रचित हैं। दोस्तों महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण को दुनिया का सबसे सटीक और सुव्यवस्थित व्याकरण बनाती है। दोस्तों संस्कृत विश्व की अन्य भाषाओं की जननी भी है। भारत की अधिकांश भाषाओं मसलन हिंदी मराठी गुजराती बंगाली आदि का जन्म संस्कृत से हुआ है और वैश्विक स्तर पर यूरोपीय इंडो यूरोपियन या हिंद आर्यी भाषा परिवार का ये मुख्य हिस्सा है। दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती ही मेरा परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे लोक कल्याणकारी विचार से संस्कृत वास्तविकता की ही देन है। दोस्तों आधुनिक समय में संस्कृत की क्या प्रासंगिकता है इस पर हम कुछ और चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं राखी का ये गीत।

दोस्तों, कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत सबसे स्पष्ट और उपयुक्त भाषा है, क्योंकि इसका व्याकरण पूरी तरह नियमबद्ध है। दोस्तों, संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण मस्तिष्क की नसों को सक्रिय करता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है और स्मरण शक्ति मेमोरी तेज होती है। संस्कृत सीखने से व्यक्ति अन्य विदेशी और भारतीय भाषाओं को बहुत आसानी और शुद्धता से सीख और बोल सकता है। दोस्तों, ये तो सच है कि आज पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद को अपना रही है। इन दोनों पद्धतियों के मूल सिद्धांतों को गहराई से समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। दोस्तों, संस्कृत केवल पूजा पाठ या इतिहास की भाषा नहीं है, बल्कि ये भूतकाल और भविष्य से जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। आधुनिक विज्ञान, तकनीकी और मानसिक शांति के लिए संस्कृत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी।

दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा हमारी धरोहर और हमारी पहचान और बदलते समय में सांस्कृतिक विरासत बचाने की चुनौती पर करते हैं। दोस्तों, हमारी धरोहरें हमारी अतीत संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास का अमूल्य हिस्सा हैं, जो समाज में हमारी अनूठी पहचान तय करती हैं। दोस्तों, हमारी धरोहरों की कई किस्में हैं, मसलन मूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इसमें ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन मंदिर, किले, स्मारक और कलाकृतियां शामिल हैं, जिन्हें हम भौतिक रूप से देख और छू सकते हैं। दूसरी अमूर्त धरोहर इसमें हैं, इसमें हमारी परंपराएं, लोक नृत्य, संगीत, रीति रिवाज, भाषा और सामाजिक उत्सव आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक व आचरण से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी धरोहरों की तीसरी किस्म में प्राकृतिक धरोहर हैं, इसमें समृद्ध जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और अद्भुत भूवैज्ञानिक स्थल शामिल हैं। दोस्तों, ये धरोहरें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और देश की विविधता को बनाए रखती हैं। इनका संरक्षण करना हम सभी का भौतिक दायित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, बदलते समय में तीव्र आधुनिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आधुनिक निर्माण और शहरों के फैलाव से कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थल और पारंपरिक बस्तियां नष्ट हो रही हैं। प्रदूषण, मौसम में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राचीन स्मारकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, पश्चिमी संस्कृति और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय भाषाएं, लोक कलाएं और पारंपरिक रीति रिवाज भी लुप्त हो रही हैं। दोस्तों, इन विरासतों को के संरक्षण के लिए कुछ उपाय जरूरी हैं। ऐतिहासिक स्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन और उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही कानूनों का साथ सख्त पालन भी जरूरी है। मसलन अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने के लिए नियमों को कड़ाई से लागू करना जरूरी है।

जैसे नजर डालते हैं आज के तापमान और मौसम पर, तो आज का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रात में इसका तापमान न्यूनतम 22.5 डिग्री रहने की संभावना है। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। और उसके बाद नजर डालते हैं आज के अखबार की सुर्खियों पर। हजारीबाग भास्कर की यह पहली खबर है, रक्षाबंधन आज है, दिन भर राखी बांध सकेंगी बहनें, भद्रा की कोई

बाधा नहीं है। भाई बहन के अटूट पर विश्वास और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन जो आज मनाया जा रहा है, बड़े जोश और खरोश और उत्साह के साथ ये पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करेंगी। वहीं भाई भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेंगे और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का वचन देंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त यानी आज शुक्रवार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। लगातार बारिश के बावजूद राखी और खरीदारी के लिए बहनें बाजार पहुंची, छाता लेकर पहुंची। महिलाओं को और युवतियों ने रंग बिरंगी राखियों के साथ भाइयों के लिए उपहार भी खरीदे हैं। राखी के अलावा मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर भी दिन भर ग्राहकों की भीड़ रही। दुकानदारों ने पूर्व पर्व को देखते हुए राखी, मिठाई और उपहारों की विशेष तैयारी की थी। और एक खबर ये है, 3 पॉइंट पर भंडारण मिले CISF, NTPC, CMP के टीमों ने बड़ी कार्रवाई की है। जोराकाट के जंगल में छापा, 256.71 टन कोयला जब्त किया गया। और यह खबर है विष्णुगढ़ से। विष्णुगढ़ में BDO का बड़ा निर्देश आया है, कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चे को पढ़ना लिखना व वर्ण ज्ञान जरूरी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मधुश्री मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार करना और बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना था। एक खबर यह है, हजारीबाग जागरण की, पुलिस ने 65 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपा और इससे जिनके मोबाइल गुम हुए थे प्राप्त होने पर उनके चेहरे खिल उठे हैं। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता, शिक्षा और ड्रेस कोड पर भी जोर दिया गया है। नापो खुर्द स्कूल में लगेगी गांधी बिरसा की प्रतिमा, ये भी खबर है दैनिक जागरण की। और रसोईया धमना दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बने हैं राम गुप्ता, ये खबर है। खास महल की जमीन पर बने होटल को किया गया ध्वस्त, ये खबर दैनिक जागरण ने छापी है। लीज नवीनीकरण नहीं कराए जाने का प्रशासन का दावा, नोटिस दिए बिना की गई है ये काम, ये भी खबर है। मेडिकल कॉलेजों में होगी रोबोटिक्स सर्जरी, जिले में 50 बेड के MCH अस्पताल बनेंगे। सिविल सर्जनों को स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को सदर अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों की को सुदृढ़ करने और उनमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। उन्होंने इस बैठक में मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने और सभी जिलों में 50 बेड के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये खबर दैनिक जागरण की है। और एक खबर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर SIR की समीक्षा के तहत है, ये एक ही खतियान से जुड़ी वंशावली वाले मतदाताओं की करेंगे जांच। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में अब होम टू रोल सत्यापन पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर SIR कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि घर घर सत्यापन के दौरान एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे और एक ही परिवार के सदस्यों का नाम अलग अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज नहीं हो। श्री रवि कुमार ने कहा कि BLO घर घर जाकर मतदाताओं के नाम, आयु और इन विवरणों का सत्यापन करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनसे Form 6 और निर्धारित घोषणा पत्र लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया
दूरी किए जाए, वहीं एक ही घर या परिवार के सदस्य अलग अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं तो आवश्यकता अनुसार फॉर्म 8 भरवाकर उन्हें नजदीकी एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध किया जाए। प्राप्त सभी पत्रों का साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
2: हेलो हजारीबाग, अभी आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो गोहली में दिन के 11 बजने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

कुछ गूंद लिए, हंस के दिल तोड़ दिए, अश्क शबनम के बहे और खामोश रहे। हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचलती।

मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में आपने सुनी अभी ये कव्वाली। इसके बोल लिखे थे शेवान रिजवी ने और संगीत तैयार किया था इकबाल कुरैशी ने।

0: सजदा एल्बम से अभी आप आवाज सुन रहे थे लता मंगेशकर की, कदील शिफाई के बोल और जगजीत सिंह की धुन थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर। अब जो रचना आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, इसमें स्वर है चित्रा सिंह का, संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने और इसके बोल लिखे हैं सईद राही ने।

चित्रा सिंह की गाई इस गजल के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा गीत। इसकी धुन तैयार की है निखिल विनय।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: दलेर मेहंदी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं एल्बम तुनक तुनक तुमसे ये गीत, जिसे तैयार की, इसकी धुन तैयार की है रवि पवार और दलेर मेहंदी ने, और शब्द रचना भी दलेर मेहंदी की है।

चंदन दास के स्वर में अभी आपने ये गजल सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं मेड इन इंडिया इस एल्बम से आलिशा चिनॉय की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल आलिशा चिनॉय और श्याम अनुरागी के हैं। संगीत की धुन तैयार की है बिद्दू ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गजल जिसे हमने लिया है जिगर से जिगर तक इस एल्बम से। स्वर हैं महेश चंदर और कविता कृष्णमूर्ति के, शब्द रचना जिगर मुरादाबादी की और संगीत से धुन तैयार की है महेश चंदर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए

0: दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है यादों की महफिल।

अभी आप सुन रहे थे शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत, जिसमें स्वर थे मोहम्मद रफी, जानी बाबू, अनूप जरोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। शब्द रचना मनोज कुमार की और स्वर रचना पांडुरंग दीक्षित की।

रिश्ता कागज का। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत राजेश रोशन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत सबसे बड़ा रुपया फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया था बासु मनोहारी ने। अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में रंगीला रतन फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भाई मोहन, ये कौन है भाई?
2: नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है।
1: तुम जानते हो
2: कौन है?
1: ये कौन है? कौन ये?
3: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और अमित खन्ना के बोलों को शुरू में पिरोया है राजेश रोशन ने।

अगला फिल्म अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आर डी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

अब आपको हम सुनवा रहे हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सफर में आपके साथ है पूजा नारायणिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन तो हम ही करते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा काम आप सभी करते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए कार्यक्रम के गीतों की झलक साझा करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों यानी इबारत से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे साथ ही आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुना देते हैं आज की इबारत जो आपने फेसबुक पेज पर पढ़ ली है, लेकिन कुछ श्रोताओं के लिए इसे पढ़ना हमारा फर्ज बनता है। रूह और सरगोशी, एक अनकहा संवाद, आज ये हमारी इबारत में शामिल है। रूह कहती है कि क्यों आज फिर इतना दीवाना सौदाई सा मन है, कितनी वर्षों की तन्हाई लेकर बैठा है यह दिल। काश कोई राह ही मिल जाए, कोई आहट आ जाए तो शायद मन थोड़ा बहल जाए। सरगोशी कहती है, देखो सामने काली घटा के साए उतर आए हैं, शायद इन्हीं पर लिखना है कोई अफसाना अधूरा सा, जिसमें छुपा हो मेरी आहों का धुआं और उन आहों में किसी के लौट आने की उम्मीद। तो रूह कहती है कि कभी सोचा था मोहब्बत में इतना कुछ मिलेगा, पर जो मिला उसके बदले में प्यार के प्यार दिया है। अब बताओ किसी टूटे हुए मन का सहारा कैसे बनूं, जब खुद ही किसी सहारे की तलाश में हूं। सरगोशी कहती है, आंखें बंद करो, शायद दूर कहीं सूरत मीरा मोहन की सी कोई छवि ठहरी हो, उस एक पल की रोशनी से तकदीर रोशन हो जाए तो फिर किस बात की शिकायत। रूह कहती है, लेकिन ये मन भी अजीब है ना, कभी पुरवैया बांध चलाए, कभी मन को अपनी दिल पसंद पनाहों में छुपा ले और कभी पलकों की पखियां बनकर किसी अनकहे सपने को सहलाने लगी। सरगोशी कहने लगी, शायद इंतजार की यही तो सजा है, जब आंखें तरस गई हैं तो हर आहट किसी अपने की लगती है, हर स्पर्श में एक सवाल उठता है और उंगलियां किसके प्यार की हैं छूती और दिल चुपचाप उस जवाब को सुनने लगता है।

जी हाँ श्रोताओं, अंधा कानून फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। रक्षाबंधन पर्व है, इसलिए इस गीत से इस सफर की शुरुआत होना तो बनता ही है। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत था। सभी श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। गीत के बाद पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोता गण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध

0: پیغام، جیسے اسی انکہے پیار کا پیغام لے کر آتا ہے۔ آنکھیں کسی کی صورت دیکھنے کو ترستی ہے اور دل کسی ایک قدم کی آہٹ سننے کو بے قرار ہے۔ یہی تو محبت ہے، جہاں دوری میں بھی اپناپن اور خاموشی میں بھی ایک میٹھا سا سواد سنائی دیتا ہے۔ فلپینز سے ہمارے شروتا جڑے ہیں اور ساتھ ہی سورت گجرات سے بھی شروتا جڑے ہیں۔ شروتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ سنواد روح
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें झारखंड से धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन किया गया है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। इस अवसर पर मुनमुन भट्टाचार्य ने बताया कि वे आगे भी बच्चों की शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगी।
2: मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से इस बार 2026 सम्मानित किया जा रहा है और ये पुरस्कार हमारे धनबाद में 27 साल के बाद ये गौरवपूर्ण पल फिर से आया है। तो ये सम्मान जो है उन वो सभी गुरुजनों को समर्पित है जिन्होंने निश्चल भाव से बिना किसी लोभ के उन्होंने अपने काम को निष्ठापूर्वक प्रत्येक दिन इन बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना लगा दिया। तो मैं उन सभी शिक्षकों को ये समर्पित करती हूँ।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो से 2020 में लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अब तक सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को तत्काल जांच अपने हाथों में लेने और सीआईडी से पूरा केस रिकॉर्ड प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक को जांच की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने को कहा। राज्य सरकार की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कल सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से इस याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 31 अगस्त निर्धारित की। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 125 हॉस्पिटल मैनेजरों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले को 2 हॉस्पिटल मैनेजर दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड किया जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजर 2400 घंटे 7 दिन अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था की निगरानी करेंगे और अस्पतालों के उन्नयन की दिशा में कार्य करेंगे। जामताड़ा जिले के झिलुआ स्थित आईआरबी 1 में पदस्थापित डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह का कल रात निधन हो गया। जानकारी के अनुसार किचन में काम करने के दौरान वे अचानक गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे 1994 के बैच के पुलिस अधिकारी थे। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत के सही कारण का पता चलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। देवघर में सावन पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि कल स्पर्श पूजा शुरू हो जाएगी।
3: सफल श्रावणी मेला रहा है 2026 का। कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई थी और इस बार स्थानीय लोगों को भी मौका मिला कि सुलभ दर्शन कर सके श्रावणी के दौरान। अब कि ये आखिरी दिन है, आज श्रावणी की पूर्णिमा भादो महीना का स्टार्ट होने वाला है, तो विधि प्रथा के अनुसार आज के दिन अर्घाट के एक बार पूजन होता है, उसके बाद स्पर्श पूजन चालू हो रहा था।
1: वहीं सावन पूर्णिमा पर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्त कतारबद्ध होकर अर्घा के माध्यम से बाबा फौजदारी नाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ आज श्रावणी मेले का समापन हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने रांची स्थित गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय में तैनात 3 अधिकारियों को 48,400 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी संतोष कुमार महतो, सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार और सहायक लेखा अधिकारी सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं। युवाओं और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत खेल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
4: आज हमारे देश और झारखंड प्रदेश में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको सहयोग मिले, जिस प्रकार से मोदी जी सहयोग दे रहे हैं और देंगे, वैसे प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति उनके प्रतिभा से देश के साथ साथ देश का नाम पूरा विश्व में स्थापित करने का काम होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ।
1: वहीं आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि आईआईटी आईएसएम हमेशा से छात्रों के सर्वांगीण विकास का समर्थक रहा है।
5: बहुत एनर्जेटिक है हमारा बच्चे, ऑलवेज हमको आके पूछते हैं कि हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक आप रेडी करके दे रहे हो, एंड हम स्पोर्ट्स में अभी काफी इन्वेस्टमेंट करके हमारा जितने सब स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसको हम रिनोवेट कर रहे हैं। टाइम में आप देखेंगे काफी सारा एनर्जेटिक बच्चे हमारा आईटीआईएसएम कैंपस से ही नहीं।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,49,700 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रूपये प्रति किलो है। और अब मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, कल से इसके सक्रिय होने की पूरी संभावना है, इससे झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने और वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षकों के नामों की घोषणा की। धनबाद के मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रपति 5 सितंबर को करेंगी सम्मानित। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो से 2020 में लापता 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। राज्य के अस्पतालों की प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 125 हॉस्पिटल मैनेजरों की होगी नियुक्ति। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को किया जाएगा अपग्रेड। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, श्रावणी मेले का आज होगा विधिवत समापन। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से झारखंड में बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: किया जाता है आज के दीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस आलेख की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघाटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बाण चलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार प्यार मोहब्बत तन्हाई बेचैनी किसी के आने की आहट मिलने की उम्मीद के लिए इंतजार में, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, ऐसा वो गाना अंदाजा लगा रही हैं इस गाने का। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपर हिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बिल्कुल सही।

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की स्पंदित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है। हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है, हुस्न इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफुसी फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है, जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कनें एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है, जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगली श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहाँ सबको मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से समझौता करना होता है और फिर रह जाता है एक लंबा इंतजार। तुम खास ही नहीं, हर सांस में हो, रूबरू नहीं हर एहसास में हो, मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। क्या बात है, आपने तो शायरी भी कर दी है। और फिर बहुत सारी जिंदगियां इंतजार में यूं ही बीत जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम में इंतजार तो होता ही है। अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज की रूह और सरगोशी की इस अनकहे संवाद ने मन के तारों को छू लिया है। इस भावुक और गहरी इबारत को पढ़कर जो मुख्य शब्द और उन आधारित जादुई गाने जहन में आए, उन्होंने वो गाने भी हमें बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं। साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है। जी,

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतजार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आरजी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमीन को गले लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं, पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आफी बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतजार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है, तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं, गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी, वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं, सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए।

एक श्रोता कह रही है कि रूह के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

हैं जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्योहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार है, एक श्रोता कह रही है कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी। त्योहार पर सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्योहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। मजनू सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा लिए, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतजार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही है कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी, क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है। पर कोई बात नहीं, सुरीला सफर में सुरीले गाने बजेंगी तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात आज रक्षाबंधन की मिठाइयां मिलने वाले नेक उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है, तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही हैं, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर जरूर शामिल हुए होंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब है।

श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है। इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीज़ा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतजार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही है कि सरगोशियां रूह और खामोशियां मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियां बंद जुबान की आवाज होती है जब मन और रूह की आवाज से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। अगला गीत, इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफर आपने तय किया है पूजा नरानिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यह गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए यह काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
1: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है, इसकी स्पष्ट

0: कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
1: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
0: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
1: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा इसका संदेह था, और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
0: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए। इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
6: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत

स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत सुनिए। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायल उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकरी बांह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा। भोली परी हारी बोली।

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भरत व्यास की बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राह होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, ही राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक

0: 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए।
1: इन्फॉर्मेशन को सेलेक्टिवली लीक कर देती है, जैसे लगता है कि वो बहुत तेजी से जांच करी, पर आप एक लॉजिक से बताएं कि आखिर इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठता है, सदस्य बैठते हैं या उनके पीए बैठते? सदस्य हैं तो आरोप लगा कि इंटरव्यू बोर्ड में सेटिंग होती थी। गिरफ्तारी किसकी हुई? पीए की। अरे पीए थोड़ी बैठता है, पीए तो माध्यम था पैसा लेने का।
0: वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है।
2: पूरे भारतवर्ष में इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की जांच किसी राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं देखी गई है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है कि जब आंदोलन भी शुरू नहीं हुए थे, मांग भी शुरू नहीं हुआ था, उस समय से एजेंसी अपने काम कर रही है और त्वरित काम कर रही है। कोई किसी को बचाना है न फंसाना है।
0: ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में आरोपी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत से झटका लगा है। अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दोनों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काकाजी ने पक्ष रखा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन गुंडा बिहार गांव में रक्षाबंधन के अवसर पर एक पेड़ भाई के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन प्रबंधन संरक्षण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने पेड़ों की पूजा अर्चना कर उन्हें राखी बांधी। इस दौरान ग्रामीणों ने पेड़ काटेंगे नहीं, काटने देंगे नहीं का संकल्प लेते हुए जंगल संरक्षण का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 माह तक लागू रहेगी। फैसला प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 शिक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुलपति ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के तहत नियुक्तियां की हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जूलॉजी विभाग के सहायक प्रधान अध्यापक डॉ आनंद कुमार ठाकुर को छात्र कला एवं संस्कृति का प्रभारी निदेशक, जबकि एसएस मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनिल वीरेंद्र कुल्लू को खेल एवं शारीरिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में संविदा के आधार पर 53 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधन का एक तल, समन्वय के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 31 अगस्त को होगा। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 28 से 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं, और आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार, और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए, और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा मैडम जी।
0: अच्छा दक्षिणा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैडम जी, मैं घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं?
1: हाँ जी।
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं या पति हैं?
1: हाँ जी, पति हमारा, दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी मेरा साया फिल्म का।
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी। मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: जिला हिसार, उकलाना मंडी।
0: अच्छा, बताइए आप
1: जी
0: क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: जी मैम, हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में कौन से काम हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: तो मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला, आपकी पसंद का काम जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब
0: ये सब सर बारिश के
1: जी।
0: पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले, पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के मैम, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी? नागपंचमी 17 तारीख को तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?
1: जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ, करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं दियामा मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से।
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: मैं बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी।
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से। तुझे ना...

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह मैम।
0: कृष्णा सिंह, कृष्णा जी आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी
1: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल चलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम।
0: हाँ जी,
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना,
0: रोग फिल्म का। खूबसूरत है वो इतना
1: जी मैम।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है, तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
1: जी
0: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है, और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम,
0: तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: मैम रिमझिम बसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं,
1: जी मैम,
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं।
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ। मैम
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी, मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ। मैम
0: हाँ जी सुल्तानपुर से बात कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है। मैं ब्लाइंड हूँ मैम।
0: जी
1: जी मैम, और मैं बैचलर हूँ मैम। मैं
0: अच्छा
1: बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से,
0: जी
1: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम।
0: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत।
1: जी मैम।

0: जी मैम, मैंने यही गाया था।
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैम, मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ से आप बात कर रही हैं।
1: हाँ दीदी।
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउसवाइफ हूँ दीदी,
0: जी।
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
1: जी दीदी।
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में। अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
1: दीदी मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है।
0: सेहतनामा अच्छा लगता है।
1: जी जी जी
0: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
1: जी दीदी।
0: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
0: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
1: इसे समझो ना रेशम की डोर भैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
0: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मढ़िया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं
1: मैं
0: धानेश्वरी जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और आपने
1: मैं
0: शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं, अपने बारे में बताइए
1: हाँ,
0: हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: घर में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ, अब
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे
1: जी
0: शहरों
1: जी
0: में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
0: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
1: जी, फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
0: अच्छा, और इतने
1: जी
0: सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से
1: जी
0: शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
1: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा था।
0: और आपके क्या क्या शौक हैं?
1: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल वूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है, पूरा
0: हाँ,
1: घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके।
0: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
1: जी, मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर से भी होता है ना,
0: जी
1: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
0: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
1: ये मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं।
0: जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत
1: हाँ,
0: सुनवाएं आपको?
1: प्यासा सावन का मेघा रे मेघा रे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
0: और आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: सखी, अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार।
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: नासिक, महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ,
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, इसमें प्लाजो भी होते हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं और भी कई तरह की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी बहन जी।
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सिर्फ तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: हाँ।
0: आपको सुनवा रहे हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहाँ से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी।
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं?
1: तो मैं हाउस वाइफ हूँ और
0: जी
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी, मैं को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिसरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ, और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं 12 बजे आता है, फिर 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे श्रोता अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं, आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: हाँ मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना,
0: जी
1: तो क्वेश्चन के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देती हूँ, कभी कभी कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ जैसे कि मैं अपने पीआर से काफी दूर हूँ, मेरा पीआर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
0: तो जब राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही से समझे याद आ जाता पियर तो, और रक्षाबंधन तो बहुत मिस करती हूँ वहां पर जाना, तो मैं चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ, चंदारी भैया।

0: देना बहना याद करे ओ चंदा रे।
1: भगवती जी आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं

0: कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SCD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का SCD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को दोहराया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में आरोपी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत से झटका लगा है। अदालत ने दोनों के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दोनों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के केंजारा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी और उनका 12 वर्षीय बेटा शामिल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार और 3 शव बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के महुआ टोली में देर रात हथियारबंद अपराधियों ने सड़क निर्माण स्थल पर गोलीबारी की और 2 वाहनों में आग लगा दी। घटना में सुरक्षा गार्ड शशिभूषण लकड़ा के हाथ में गोली लगी, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई।

अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती। यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के दो चार कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरे सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चीटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा

का चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहां यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूं, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, बड़े स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं, और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताए दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था। और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

0: इस बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचवाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़ कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:29 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मित व्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश।

0: ठाकुर जी का लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
1: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
1: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: जी
0: तो बिमलेश जी, शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
1: जी
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
1: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
1: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
1: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
1: जी,
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
1: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
1: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
1: जी,
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
1: जी,
0: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
1: जी,
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
1: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
1: जी,
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
1: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
1: जी,
0: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
1: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियाँ और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियाँ राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
1: जी,
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
0: जी,
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक

0: नंबर यानी 8800044559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है
4: पिताजी।
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
5: पिताजी ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
4: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
5: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता

0: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
1: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
2: भला वो क्या?
0: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
1: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
3: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
0: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
4: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
2: जी भैया आप ठीक कह रहे हैं।
0: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
0: महाशय क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
2: हाँ
4: आपका ऊंट खो गया है ना?
2: हाँ मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आँख से देख नहीं पाता है ना?
5: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
0: महाशय हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
5: है?
0: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
5: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
2: नहीं नहीं,
5: अरे,
2: नहीं।
5: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
2: अरे महाशय हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
5: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
2: नहीं
5: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
2: वो
5: देखो मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
2: लेकिन
5: अरे, अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
2: क्या
5: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
3: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
5: मुझे कुछ नहीं सुनना।
2: लेकिन महाशय हमारी बात सुन ले महाशय।
5: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
5: अब तुम सब राजा के पास चलो।
6: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
0: राजन हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
6: महाराज यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
7: तुम लोगों को कुछ कहना है?
2: राजन हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
7: अच्छा तो ये बात है
2: जी।
7: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
8: जी महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
7: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
0: महाराज इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
2: और महाराज वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई

0: उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
1: खाइए खाइए, लीजिए।
2: जी महाराज, जी महाराज,
3: धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
4: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
2: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
5: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहां अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
6: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
4: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
4: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
5: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
4: क्या बात है?
2: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
4: अच्छा,
2: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
4: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
6: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
4: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
2: धन्यवाद महाराज।
7: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
4: मैं सचमुच चकित हूँ।
7: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
8: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।
9: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
10: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
9: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्य निष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
10: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
9: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित

0: करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला सरला बेटी, सरला बेटी।
2: अरे बाबूजी, आप
3: कहां खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
2: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा एक बात कहूं?
2: जी
3: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
2: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
3: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा,
3: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
2: पर
3: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
2: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
3: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊँ सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
2: हाँ, जी सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
2: सर, मैं बताऊँ?
4: हाँ हाँ सरला, तुम बताओ।
2: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
2: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
8: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
9: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
2: I'm so excited.
9: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आँखों से।

0: 랜딩 페이지.
1: 정말.
2: 정말. 수고하셨나, 진짜.
3: 땡큐.
2: 대단해.
4: 아, 이쁜 애체들이 뜻을 들었다.
2: 아메이징.
5: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
6: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
5: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
6: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
5: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ाने रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
6: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
5: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
7: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को ये डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
5: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
8: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित

0: बातचीत कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5 बजने को हैं। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामलों को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग दोहराई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए CBI जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI को जांच सौंपी जानी चाहिए। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 माह तक लागू रहेगी। फैसला प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में संविदा के आधार पर 53 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधक का 1, तल समन्वयक के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 31 अगस्त को होगा। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 28 से 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लकी अली की आवाज में। इस गीत को लिखा है विजय अकेला ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम कहो ना प्यार है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे फिल्म रक्षा बंधन में। इस गीत को लिखा अर्शाद कमिल ने और संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजय से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोल, संगीत आनंद मिलिंद का।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फना फिल्म का गीत, शान और कैलाश खीर की आवाजें हैं, प्रसून जोशी के बोल, संगीत जतिन ललित का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुने वालन सभी भाई बहन के मुकेश धन से जोहार प्रणाम और राम राम। साथ ही साथ सभी भाई बहन के कार्यक्रम खेती बाड़ी में स्वागत है, जोहार है और सभी भाई बहन के रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना भी। आज खा भिनसरिये से सभी भाई बहन मने जो है पूजा पाठ जो करके है अपन राखी बांधे और बंधाए में व्यस्त हलथिन। और देखा जब कोई एक पर्व बीच में आ जाए ना तो हम इनके एक दिन के जो है एक तरह का बोला कि एनर्जी बोला ऊर्जा बोला एक दिन हम कि हम इन मिल जाए और उसके बाद जब वो पर्व जब देखे ख़त्म हुआ है तो हम इन और ढेर सारा ऊर्जा के साथ जो है हम इन अपन काम में फिर लग जाइए। और देखा रक्षाबंधन जो त्यौहार है एगो देखा ये एगो रक्षा कवच है भाई बहन के बीच में। देखिए एक दूसरा के दोनों अपन सुख दुख में साथ निभाते एक कसम देखा हुआ है और रक्षा कवच ही हुआ है। साथ साथ बहन देखा कि अभी जो है समय चल रहा है अगस्त अगस्त का महीना है और अगस्त और सितंबर के जो महीना हुआ है वो धान के खेत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ है। एकर में हमें इनके निगरानी अपन खेत में करे के पड़ा है काहे कि देखा ये जो समय हुआ है एकर में धान के बाली और धान में जो है दाना भरे के ही समय हुआ है। तो इस समय हम इनके सावधानी पूर्वक अपन जो खेत है देखे चाहिए और बहुत सा चीज देखे के ये भी चाहिए कि धान के खेत में हम इनके पानी कितना है। यानी कि पानी देखा अगर 2 से 5 सेंटीमीटर अगर पानी हम इनके खेत में रहा है और या पर्याप्त अगर नमी होकर में खेत में रहा है तो एकर में है धाना जे दाना है और धान के बाली है एक बढ़िया एकर में बना है। साथ साथ बहन अगर पानी अगर कम हुआ है तो एक में दिक्कत हम इनके हो सका है तो हम इन खेत में अपन जो पानी या नमी के कम कोई भी हालत में न हुए दिए। साथ साथ देखा कि बाली निकले के समय में अभी जो है कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले करके NPK 052-34 या उपरयुक्त जो है मल्टी न्यूट्रिएंट्स के छिड़काव करे से दाना जो है मजबूत हुआ है और चमकदार भी हुआ है कर में। और देखा इस समय में देखा बहुत सा रोग व्याधि भी लगे के संभावना एकर में हुआ है तो हम इनके ये भी गौर करे के चाहिए कि किसी तरह के रोग व्याधि तो नहीं लग रहे किसी तरह के हम इनके जो धान के फसल है ओकर में किसी तरह के हम इनके बदलाव तो नहीं दिख रहे या हम इनके जो है कि कहीं पीलापन हो जा रहा है या धान के जो बाली है मुरझा रहा है इस तरह के तो हम इन नकर में नहीं देख लिए। तो अगर इस तरह के हम इन देखिए तो हम इन ओकर में सचेत हो जाइए। देखा धान के जो खेत हुआ है ओकर में तना छेदक या हम इन बात करेंगे पत्ती लपेटक जो कीट के प्रकोप होवे के संभावना एकर में बहुत ज्यादा हो जाए इस समय में और एक

0: बचाव के खातिर हमीन जे है क्लोरो ट्रिकनोप्रोल के जे है हमीन छिड़काव करिए तो ई हमीन के रोग दूर एकर में होवे है। और देखा बहन कि बहुत सा हमीन देखा ये कि फफूंद जनित रोग भी एकर में होवे है कि जेकर हमीन बोले ये धान के झोखा के खातिर हमीन फफूंद नाशक के प्रयोग एकर में हमीन करिए। और हमीन देखा कि हमीन के जो खेत है अगर हरा भरा हमीन के रहा है तो हमीन के मन भी हरा भरा रहा है। और ओकर खातिर जो है हमीन के समय समय पे अपन खेत के निगरानी करे के समय जरूर हो जाए, निराई गुड़ाई के समय हुआ है तो हमीन अपन खेत के हमेशा सुबह शाम फिर सर एक बार कम से कम हमीन जा करके देखेगी किसी तरह के बदलाव तो नहीं आ रहे, किसी तरह के पत्ता में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, किसी तरह का रोग व्याधि तो नहीं लग ले तो समय समय पे ये सब चीज़ हमीन के देखे के चाहिए। और देखा बहन कार्यक्रम में तो हमें बन ले ही है और समय भी हो चुके है जरूरी संदेश के अरे वो प्यारा से गीत के और बाद हमीन बात करबे आगे चर्चा में कि दलहन में हमीन आत्मनिर्भर मिशन का है, दलहन के आत्मनिर्भर मिशन का है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का है और फायदा का है, ये सब के हमीन बातचीत करबे। लेकिन अभी समय हो गए है जरूरी संदेश अरे वो प्यारा सा गीत के तो सुने ही है जरूरी संदेश और प्यारा सा गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और देखा हमें कितना बढ़िया गीत सुनलिए और जरूरी संदेश भी सुनलिए। और सही बात है भाई बहन कि जैसा कि हमीन के है खेत बाड़ी अगर हमीन के हरा भरा रहा है तो हमीन के मन भी गदगद हमीन के रहा है। और देखा किसान के सबसे जो प्यारा रंग है वो हरा रंग ही है। अगर समझ ले जे खेत जो है हरा है तो ओकर में देख ला कि किसान के ओकर में मेहनत ओकर नजर आवे है। और जे किसान जे है बुरा ओकर जे धन है कि वो एक चीटी से लेके एक हाथी तक खा जा है देखा। तो एकर में हमीन देखा किसान के सबसे बड़ा दिलवाला भी बोले ही है कि उनकर जे अनाज है जे धन है वो 12 महीना देखा खेत में पड़ल रहा है बिना किसी ताला लगाए के। तो एकर खातिर हमीन बात करेंगे कि किसान कितना बड़ा देखा एकर में दिलवाला है। अब देखा जैसा कि हमीन बतैला लिए कि हमीन अब बात करबे दलहन

0: आत्मनिर्भर मिशन के, तो जो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है वो भारत सरकार के एगो केंद्रीय योजना है जेकरा जे है अक्टूबर 2025 में शुरू कर ले गए हले। एकर में देखा कि 11,440 करोड़ के बजट के साथ ई योजना के शुरुआत करल गेले है ताकि देश जे है हम इनके दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। अब एकर देखा कि बात हम इन करबे कि एकर उद्देश्य का है और एकर लक्ष्य का है, तो एकर उद्देश्य के अगर हम इन बात करबे कि 2030 से 31 वित्तीय वर्ष तक कुल 350 लाख टन एकर उत्पादन के है, एकरा बढ़ाना है, एकरा पहुंचाना है। साथ ही साथ जे एकर में हम इन अभी देखा कि आयात एकर में हम इन करेंगे, आयात से हम इनके बहुत सा पैसा देखा विदेशी मुद्रा बाहर चल जाए, एकरा घटाना है जेकर से जे देश हम इनके जो है वो आत्मनिर्भर बनते और आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होते। साथ ही साथ किसान के जो है एकर जैसा कि है अरहर उड़द मसूर में और जो है दलहनी जो भी फसल है ओकर में देखा MSP लागू करना है कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है ओकरा लागू करना, जेकर से किसान जो है कोई भी हालत में किसान के जो है लागत के सही मूल्य अगर में मिल सके है। साथ साथ अगर एकर हम इन लक्ष्य के बात करबे तो एकर लक्ष्य है 2025-26 से 2030-31 तक दाल में 45% जो है वृद्धि करना एकर में लक्ष्य है, जेकर से हम इनके देश जो है कि दाल में आत्मनिर्भर बन सके है। साथ ही साथ अगर खेती के दायरा के एकर में हम इन बात करबे तो खेती के दायरा में है 310 लाख हेक्टेयर हम इन अधिक बोला कि हम इन एकर में जमीन में खेती कर सकाइए, जेकर से 13% जो खेती के क्षेत्र में एकर से विस्तार होते। और एकर में एक और भी लक्ष्य है प्रति एकड़ जेकर पैदावार जो है कम से कम 28% तक हम इनके सुधार करना एकर में हम इनके लक्ष्य रखल गए हैं। तो अगर ये सब चीज हम इन करे हिए और हम इन दलहन में विशेषकर ज्यादा जोर दिए तो देखा हम इन निर्धारित समय के अंदर ही देखा हम इन आत्मनिर्भर बन सकेंगे और देखा धीरे धीरे हम इन आत्मनिर्भर हर एक क्षेत्र में भी बनते जा रहिए। अब देखा एक बात है कि हम इनके जो देश है ये है कृषि प्रधान देकर में हम इनके देश है और देश के अधिकतर जो आबादी है ये खेती बारी और पशुपालन पे ही निर्भर एकर में है। और देखा खेती बारी और पशुपालन के एक दूसरा के पूरक भी बोलल गए है, एक दूसरा के पूरक इसलिए बोलल गए है कि देखा खेत से जे हम इनके चीज उपजते और ओकर साथ जे अपशिष्ट जो निकलते वो हम इनके पशुपालन में काम आ जाते और पशुपालन से जे हम इनके देखा कि गोबर खाद या मलमूत्र जो हुआ है वो हम इनके खेती के मिट्टी में काम आ सका है, जेकर से खेत के जो माटी है वो बढ़िया होते स्वस्थ होते। और देखा सरकार भी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पूरा जोर दे रहे कि अगर खेत के माटी अगर स्वस्थ रहते तो जे भी चीज हम इन उन्नत चीज ओकर में डालबे वो अच्छा से एक पैदावार देते। और देखा आगे भी जो हम इन एक जानकारी ला लिए और एक किसान जो है बोला और पशुपालक भी साथ में है शिवम जो प्रसाद है ओकर से हम इन बातचीत कर लिए जे कि बता रहे कि पशुपालन और खेती बाड़ी कैसे एक दूसरा के पूरक है। तो आवाज सुनिए जानकारी, पशुपालन और खेती बाड़ी दोनों है एक दूसरा के पूरक, किसान है शिवम प्रसाद से।
1: श्रोता आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डेयरी फार्म के संचालक शिवम प्रसाद से। तो शिवम जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार है।
2: जोहार
1: शिवम जी, आपके पास कितना गाय गरु है?
2: मेरे पास अभी 6 गाय है और 6-7 बकरे भी हैं, बकरियां भी हैं।
1: यानी बकरी पालन और गाय पालन आप दोनों करते हैं?
2: हाँ, साथ में रहते हैं, किसान के है यहाँ उपज होता है तो वहाँ खपत करते हैं।
1: अच्छा, एक बात आता है गौ पालन में उसका आवास, अगर उसका आवास बढ़िया रहेगा तो गौ पालन में बढ़िया ढंग से होता है। आप उसका आवास कैसे बनाए हैं, सेट कैसे बनाए? गाय सेट
2: है कि एक 12 फीट का है।
1: जी हाँ।
2: और लंबाई 17-18 फीट है,
1: 12 फीट चौड़ा है, 17-18 फीट लंबा है। इसमें आप गौ पालन करते हैं?
2: पालन करते हैं।
1: जी हाँ। कौन कौन नस्ल का गाय है आपके पास?
2: ये नस्ल को तो देहाती जो जानते करते हैं, जानते भी हैं लोग के गांव में जो पूर्वजों चलाया वही है।
1: जी हाँ।
2: और अभी सुई के हिसाब से जो देते हैं डॉक्टर,
1: जी हाँ,
2: वही नस्ल तैयार हो रहे हैं।
1: नस्ल तैयार हो रहा है। बहुत सारा देख रहे हैं आजकल किसान लोग जो है जो गाय पालन कर रहे हैं वो जर्सी को देहाती से क्रॉस करा करके जो बच्चा होता है क्योंकि उसका जो बच्चा होता है वो एक तरह से देखिए दूध ही बढ़िया देता है, हर एक मौसम सहन भी करता है और बीमारी भी उसमें कम आती है। तो ये हम देख रहे हैं, इधर बहुत से किसान लोग भी कर रहे हैं, आप भी ऐसा किए हैं?
2: किए हैं
1: जी, हाँ किए हैं। क्या फायदा आपको नजर होता है वैसा बच्चा से?
2: वैसा बच्चा से थोड़ा हाइट भी हो जाते हैं जानवर को और दूध भी थोड़ा ज्यादा देते हैं,
1: ज्यादा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप उसका आवास बना रहे थे कुछ तो ध्यान में आया होगा कि कैसा आवास बनाया जाए, उसका ढलान जमीन बनाए होंगे, नाद बनाए होंगे?
2: हाँ जी बनाए होंगे।
1: कैसा नाद बनाया, सीमेंटेड नाद बनाया है या बहुत से लोग आजकल ड्राम का भी कटवा?
2: नहीं नहीं, सीमेंट का बनाया है।
1: सीमेंट का ही बनाया है? अच्छा, कितना नाद होगा उसका?
2: करीब करीब इसमें 10 किलो कुट्टी
1: है।
2: हाँ, सान के मतलब गीला करके 10 किलो हो जाते हैं,
1: गीला करके कम से कम 10 किलो हो जाता है उसमें। और नाद का कितना साइज, मतलब ये पीस कितना बनाया है? मान लीजिए हमारे पास
2: 2 फीट का लंबा ही है और 2.5 फीट
1: चौड़ा है।
2: हाँ चौड़ा है।
1: अच्छा ये कितना है, 10 गो 12 गो कितना बनाया है?
2: 6-7 गो होगा।
1: 6-7 गो है,
2: जितना जाए उतना का,
1: जितना जाए मतलब उतना रखते हैं। और चूंकि एक बड़ा नाद रहता है तो आराम से गाय का मुंह भी उसमें घुस जाता है, आराम से वो खा भी सकते हैं।
2: और मिलाने में भी अच्छा है,
1: मिलाने में भी अच्छा है किसान को। पानी का भी व्यवस्था वहाँ पूरा आता है,
2: नल का भी है,
1: नल का व्यवस्था है। अपना गंदा अगर हुआ आप साफ सुथरा कर दिए,
2: निकाल दिए।
1: और ढलाई नुमा जमीन होता है तो आराम से साफ सुथरा भी हो जाता है उससे।
2: और बगल से नाली निकाल दीजिए,
1: बगल से नाली निकाल दिए हैं,
2: मूत्र से बाहर हो जाए।
1: सही बात है, जल निकासी हो जाए उसका और मलमूत्र भी निकासी हो जाए उसका। तो गाय का जो अपने कितना समय खाना देते हैं इनको?
2: सुबह शाम देते हैं और कहीं दोपहर में इधर उधर निकालने के लिए बाहर खोल देते हैं हवा पानी खाने के लिए।
1: अच्छा सुबह शाम देते हैं। और ये और खाना में क्या देते हैं फिर बरसात का चूंकि समय?
2: जैसे अभी कुट्टी हो गया, चोकर हो गया और मक्के का दर्रा, जैसे दूध दे रही तो उसको कुछ और विटामिन चाहिए।
1: जी हाँ
2: वही दे रहे।
1: अच्छा कुछ दवा भी चलाते हैं क्या डॉक्टर का सलाह से कुछ?
2: कभी जब बीमारी आ जाती है, जैसे कमजोर गाय हो गई, दूध कम देने लगी, तो विटामिन वाला दवा देते हैं।
1: अच्छा अच्छा ये चारा कितना बार देते हैं? एक दिन में 3 बार के 2 बार देते हैं? कितना बार?
2: नहीं, 2 बार ही देते हैं।
1: 2 बार देते हैं, सुबह शाम देते हैं। अच्छा अरे ये आपका खेत तो खेती बाड़ी तो करते हैं?
2: उसी में जो घास होता है ना तो दोपहर में डाल देते हैं, खा लेते हैं।
1: जी हाँ, हरा घास भी आप उनको दे देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पशुपालन और खेती बाड़ी एक दूसरे के पूरक है। अब चूंकि किसान आदमी है और पशुपालन भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, इससे जो निकला अपना पशुपालन में काम आ गया, उससे दूध आपका हो गया अपना, और गोबर खाद जो निकला खेत में काम आ गया। तो गोबर खाद लगभग कितना निकल जाता है? बढ़िया निकल जाता है,
2: बढ़िया
1: खेती भर निकलता है।
2: हाँ खेती बाड़ी निकल जाता
1: है, खेत भर निकल जाता है। और गोबर खाद इधर आप प्रयोग कर लेते हैं? जी हाँ। अच्छा एक बात और बताइए, इसमें कितना दूध आपका लगभग हो जाता है?
2: दूध 2.5 kg का हर टाइम में।
1: अच्छा एक बात इसमें और बताइए कि जब वो गाभिन होती है तो उस समय क्या सावधानियां बरतते हैं?
2: उसका अलग रख देते हैं, जैसे कोई भी चीज का खाना उसका अलग चारा डालते हैं।
1: जी हाँ,
2: कोई डॉक्टर का सलाह देते हैं तो विटामिन वाला दवा उसी में डालते हैं।
1: क्योंकि उस समय उनको ज्यादा पौष्टिक वाला आहार का चाहिए क्योंकि बच्चा उसको बढ़िया।
2: हरा भरा घास भी देते हैं उसी कुट्टी में मिला के, बाजरा वाला भी रहता है।
1: बाजरा वाला भी रहता है
2: उसी काट के मशीन से देते हैं।
1: बाजरा भी आप लोग उपजाते हैं क्या?
2: नहीं, खाने भर उसका घास चारा।
1: अच्छा उसका खाने भर, अच्छा घर भी आपका हो जाए अपना, उसका खाने भर का भी
2: चारा
1: हो जाए, चारा हो जाए। अच्छा जब वो गाभिन रहती है तो डॉक्टर साहब भी बहुत सा देखा गया है कि उनके लिए एक अलग छोटा रूम अपना बना दिया जाए ताकि वो और सब गाय से अलग रहे, ताकि पेट में उनका चोट ना लगे, किसी तरह उनको दिक्कत ना हो,
2: तो उसके लिए अलग अलग बनाना ही पड़ता है।
1: जी
2: एक साइड से उन गाय वाले रखते हैं, एक साइड गाभिन वाला रखते हैं।
1: अच्छा दोनों आप अपना रखते हैं,
2: सावधानी बरतते हैं।
1: और बच्चा है, जब वो देने लगती है, मान लीजिए अगर
2: बच्चा
1: आज बच्चा वो दे रही है तो उसमें क्या सावधानी क्या बरतते हैं?
2: रखना पड़ता है बच्चे को अलग, रखना पड़ता है माई को अलग।
1: और जब बच्चा निकलता है उसमें कुछ सावधानी बरतते हैं कि
2: डॉक्टर आ जाते हैं?
1: डॉक्टर को अपना फोन कर देते हैं, वो आ जाते हैं। जी हाँ, और बढ़िया ढंग से आप अपना पशुपालन, अपना गाय पालन, डेयरी फार्म अपना कर रहे हैं। अच्छा है। और खेती बाड़ी में क्या क्या लगाते हैं आप?
2: खेती बाड़ी में सीजन के हिसाब से चलते हैं सब,
1: सीजन मतलब जो सीजन आपका रहा।
2: जैसे आप गोभी का सीजन आ गया तो गोभी लगाना पड़ेगा, गाजर लगाना पड़ेगा, आलू लगाना पड़ेगा।
1: जी हाँ,
2: मतलब अपने खाने के लिए थोड़ा मार्केट दो पैसा
1: अपना भी हो जाए, खाने के लिए हो जाए, कुछ बच गया बाजार में भेज दीजिए, और इससे भी बच जाता है तो मंडी में दे दिए, और हरा साग सब्जी जो अपना रहा बच गया उसमें तो खेती उसमें पशुपालन में काम आ गया। चलिए, इतना बढ़िया जानकारी आप हमारे श्रोता भाग में तो दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: देखा, अभी हम इन जानकारी सुन लिए, पशुपालन और खेती बाड़ी दोनों एक दूसरा के पूरक है, और जानकारी देवल थीन शिवम प्रसाद, और देखा कितना बेस जानकारी देवल थीन, और बतैले कि किस तरह हम इन जो है पशुपालन भी कर सके हिये, और साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे थीन, और जरा गरीब के एटीएम भी हम इन बोले हिये। और देखा आप समय हो गए है आज के जो है बाजार भाव और मौसम के जानकारी के, और अगर बाद हम इन बात करबे समापन चर्चा में पीएम जनधन योजना के बारे में। तो बाजार भाव में आज है लाल आलू जो है 20 से 25 रुपये किलो है, सफ़ेद आलू है 15 से 20 रुपये किलो, प्याज जो है 45 से 50 रुपये किलो है, फूलगोभी है 40 से 45 रुपये किलो, पत्ता गोभी है 35 से 40 रुपये किलो, पटल है 35 से 40 रुपये प्रति किलो, भिंडी 20 से 25 रुपये प्रति किलो, नेनुआ 20 से 25 रुपये प्रति किलो, कद्दू 20 से 25 रुपये प्रति किलो, हरा मिर्च 60 से 70 रुपये प्रति किलो, और देखा शिमला मिर्च है 80 से 90 रुपये प्रति किलो, गाजर है 35 से 40 रुपये प्रति किलो, बीट जो है 45 से 50 रुपये प्रति किलो, बीन जो है 35 से 40 रुपये प्रति किलो, मूली है 25 से 30 रुपये प्रति किलो, धनिया जो है धनिया पत्ता 90 से 100 रुपये प्रति किलो, अदरक जो है 100 से 120 रुपये प्रति किलो, खीरा जो है 35 से 40 रुपये प्रति किलो, टमाटर है 35 से 40 रुपये प्रति किलो, लाल साग और देखा पालक साग 25 से 30 रुपये प्रति किलो। और देखा कि अब समय हो गए फिर से मौसम के जानकारी के, और देखा मौसम के जानकारी में है आज के जो अधिकतम तापमान रहले वह है 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता 79%। और देखा कल के जो मौसम के पूर्वानुमान है, कल के मौसम के पूर्वानुमान में अधिकतम तापमान रहे की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता 80%। और देखा कि आज और कल देखा कि गर्जन के साथ जो है वर्षा होवे के पूरा संभावना भी है। तो ई रहले आज के मौसम के जानकारी और बाजार भाव। अब देखा समापन चर्चा की ओर हम बढ़ रही है, और देखा समापन चर्चा में जो है हम आज बात करबे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार के एगो वित्तीय समावेशी योजना है, और आज ही के दिन यानी आज से 12 साल पहले 28 अगस्त 2014 के एकर शुरुआत होले हले। और देखा कि कितना बढ़िया दिन है आज 28 अगस्त, और आज ही से के दिन एकर शुरुआत होले हले आज से 12 साल पहले यानी 2014 में। एकर देखा मुख्य उद्देश्य है देश के हर परिवार के बैंकिंग और वित्तीय सेवा से जोड़ना ही एकर लक्ष्य है। अगर हम इन एकर विशेषता के बात करबे तो एकर विशेषता में देखा मुख्य विशेषता में एकर देखा बात करबे जीरो बैलेंस के एकर में खाता हुआ है। जीरो बैलेंस के खाता में देखा एकर में हुआ है कि ऐसा हम इन पैसा एकर में जीरो भी अगर हम इनके हो गए या 10 रुपया हो गए 5 रुपया हो गए तो एकर में कोई जो है चार्ज एकर में नहीं कटते। साथ ही साथ रुपए डेबिट कार्ड देखा एटीएम कार्ड हुआ है जेकर से ई खाता से जुड़ल जे भी लोग है ओकर से आराम से पैसा के लेन देन कर सका है एटीएम के मदद से। अब देखा बहुत सारे लोग तो फोन पे भी इस्तेमाल कर सके मदद से कर ले। और देखा एक बात एकर में एकर भी खासियत है या विशेषता बोलते हम इन बात करबे कि बीमा कवर भी एकर में हुआ है, जेकर में देखा दुर्घटना बीमा के लाभ भी एकर में मिले हैं। सबसे बड़ा चीज देखा ई खाता में एगो और बात है कि ओवरड्राफ्ट के जो सुविधा एकर में देवल गए है, जैसे दूसरा खाता में कर में वैसा कोई फैसिलिटी न है जो विशेषता न है, एकर में ओवरड्राफ्ट के जो सुविधा है वो 10,000 रुपया तक देवल गए है। यानी कि अगर हम इन अकाउंट के अगर अकाउंट में हम इनके खाता में अगर पैसा नहीं भी रह सका है तो हमें 10,000 रुपया तक का देखा एकर में हम निकाल सके है, और बाद में फिर एकर में जमा हम इन कर सके है। सबसे बड़ा बात एकर में ये है कि देखा अभी कि जितना सारा भी योजना है वो देखा डीबीटी के माध्यम से एकर में हुआ है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधा लाभुक के खाता में वो पैसा जा है। अगर एक रुपया अगर वो भी सरकार, दिल्ली सरकार या राज्य सरकार बोला, भारत सरकार या राज्य सरकार बोला, अगर छोड़ा है तो पूरा के पूरा पैसा एकर में खाता में एकर में आ जाए। और देखा कि बहुत जल्दी एकर में देखा हम इनके खाता में पहुंचा, जेकर से हम इन अपन जो जरूरत की जो चीज़ है वो हम इन कर एकर में सका है। तो देखा कितना बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि अब देखा कि लगभग सभी के पास ये खाता हो गए है, जेकर ये पास खाता ही नहीं है। अब देखा गांव जो हमीन है और हम गांव हमीन के जो है विकसित हमीन के हो रे, और सब योजना के पैसा देखा जो योग लाभुक है ओकर खाता में कर में आ रे। और जब खाता में कर में आवे है तो देखा कि हम इनके जे मुंह में जो है और शरीर में देखा खुशहाल एक चीज जमीन अपन जीवन एकर में हम इन व्यतीत एकर में कर रही है। तो देखा जे अगर ये खाता से अभी तक नए लाभ ले ले है तो ये खाता में पीएम जनधन योजना के लाभ लेकर के अपन खाता खुलवाए और ये सब योजना के से लाभ लेकर के अपन आगे के भी अपन काम कर सके और सरकार के ये स्कीम के लाभ भी एकर में ले सके। और अब यही जानकारी के साथ अब हम इनके कार्यक्रम खेती बाड़ी से विदा लेवे के समय भी हो रहे, तो हमारा मुकेश के अनुमति देते जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 5:59 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 माह तक लागू रहेगी। फैसला प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में संविदा के आधार पर 53 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधक का 1, तल समन्वयक के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 31 अगस्त को होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।

स्वागत करते हैं आप सभी बहनों का हमारे आज के अंगना कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। भाई बहनों के लिए आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आज है राखी का त्योहार। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहनों, बहुत ही अनमोल होता है भाई बहन का रिश्ता। नोक झोंक के साथ फिक्र भी होती है, एक वादा होता है रक्षा करने का, तभी तो इसे रक्षा बंधन कहते हैं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और पवित्र स्नेह का पर्व है। यह पावन त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस दिन भाई अपनी बहनों को उपहार तो देते ही हैं, साथ ही उन्हें हर परिस्थिति में उनकी रक्षा और सम्मान करने का संकल्प भी लेते हैं। राखी का धागा साधारण ही सही, लेकिन यह जीवन भर साथ निभाने के असाधारण संकल्प से जुड़ा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल का टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांधा था, जिसके बदले कृष्ण ने हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन निभाया था। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं, मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी ने मदद के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने रानी कर्मावती की राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ाई लड़ी और रानी के राज्य की रक्षा की। बहनों, वैसे तो कई प्रसंग हैं, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रसंग, लेकिन रेशम के धागे को बांधने की जो परंपरा चली आ रही है वह भावनात्मक प्रेम से जुड़ा है। बहनें भाइयों की उन्नति के लिए दुआ मांगती है। सगे भाई बहन के अलावा अनेक मुंह बोले रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। व्यस्त आधुनिक जीवन के बीच रक्षाबंधन जैसा त्योहार पूरे परिवार को एक साथ आने और आपसी रिश्तों की मिठास को और गहरा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। बहनों, पर्व त्योहार की बातें तो हो गई, अच्छा खान पान और पौष्टिक आहार भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसी से संबंधित आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता। विषय है बच्चों और माताओं का पोषण आहार। वार्ताकार हैं देविका वर्मा।
6: नाइटिंगल ने कहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य का रहस्य लोगों के घरों में ही है। स्वास्थ्य एवं विकास, पोषण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी स्थितियों जैसे आवास, जल आपूर्ति, सफाई आदि पर निर्भर करता है। बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे अधिक क्षति कुपोषण से, विशेष करके प्रोटीन, कैलोरी, माली न्यूट्रिशन से होती है। यह बात संपूर्ण विश्व में होने वाले अध्ययनों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। विटामिन ए डी की कमी से बच्चों के शरीर पर अपूर्णीय क्षति होती है। उनमें अंधेपन के लक्षण धीरे धीरे आने लगते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहती है तो एक दिन उन्हें पूर्ण अंधापन आ जाता है। अतः बचपन से ही कुपोषण से बचाव की उचित तथा उचित पोषण प्रदान करने की व्यवस्था जरूरी है। अधिकांश भारतीय परिवारों के आकार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बड़े होते हैं। यदि गर्भावस्था में तथा उसके बाद महिलाओं को समुचित पोषण मिलता है और उनके शिशु की देखरेख का प्रबंध हो सकता है, जैसा कि अक्सर पश्चिमी देशों में होता है, तो वे भी राष्ट्रहित के उत्पादनों में हिस्सा बटा सकती हैं तथा पुरुषों की बराबरी में राष्ट्र के विकास में निजी भूमिका निभा सकती हैं। यदि आहार के नमूने में, बनाने की शैली में, चुनाव के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए तो कम खर्च में पौष्टिक आहार बच्चों व माताओं को मिल सकता है। जैसे सब्जी की जगह प्यूरी बनाकर, जैसे गाजर पत्तेदार सब्जी को स्वादिष्ट तरीकों से बनाकर हेल्दी फूड बन सकता है। संयमी, धैर्यवान तथा कृत संकल्प होने की जरूरत है। महिलाओं को इस संबंध में पोषण संबंधी शिक्षा देना जरूरी है। मातृ शिशु पोषण का तात्पर्य हजार दिनों की अवधि के दौरान माँ और बच्चों के पोषण से है, जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिन तक होता है। जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक बच्चों को माता से गाढ़ा पीले रंग का दूध प्राप्त होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें प्रोटीन एवं विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों को प्रारंभिक कुछ माहों तक संक्रमण से बचाता है और पाचक एंजाइम को भी उत्तेजित करता है। पूरे जीवन में भोजन महत्वपूर्ण है, खासकर शिशु के जन्म के प्रथम वर्ष में। प्रथम वर्ष में ही उसके शरीर एवं स्वास्थ्य की नींव का निर्माण होता है। पोषक आवश्यकताएं प्रति यूनिट शरीर भाग पर इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस अवधि में उसकी वृद्धि तीव्रता से होती है। जन्म पश्चात लगभग 9 माह तक वह तेजी से वसा का संचय करता है, उसके बाद मात्रा कम हो जाती है। उत्तम पोषित शिशु में पेशी ऊतक मजबूत होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद 6 माह की उम्र तक उसे माँ के दूध से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में समावेश रहता है। यह दूध बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए उपयोगी होता है। माता का दूध जो बच्चों के पाचन के योग्य होता है। बहनों, माँ का दूध पूर्णतः जीवाणु रहित होता है और इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होते हैं। बहनों, दुग्धपान कराने से बच्चों और माता दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। कभी कभी पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे वे सोचती हैं कि हमने खट्टा खा लिया तो बेबी को छींके तो नहीं आएगी, हमने तीखा खा लिया तो मेरा बेबी बीमार तो नहीं हो जाएगा। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है, पर किसी कारणवश ये नहीं मिल पाए तो अन्य प्रकार का दूध, यानी गाय का दूध, कुछ डिब्बा बंद दूध दिया जा सकता है। कुछ अवस्था में माता का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। यदि माता को कोई दीर्घकालीन बीमारी यथा क्षय रोग, हृदय रोग आदि हो। शिशु में प्रोटीन की कमी माता के दूध छूटने पर भी होती है। यदि उस समय गाय का दूध उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो यह कमी पूरी हो जाती है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो बच्चे के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा हड्डियों एवं दांतों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। माता का दूध एवं गाय का दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो इन खनिजों की पूर्ति होती रहती है। 4 से 6 माह के बच्चों को दाल का पानी, अंडे की जर्दी तथा सब्जियों का सूप दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा विटामिन होते हैं। गेहूं का दलिया, चावल एवं मूंग दाल की खिचड़ी, सूजी की खीर, कॉर्नफ्लेक्स आदि 7 से 8 माह के बच्चे को देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे की पाचन संस्थान भोजन पचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी प्रकार बहनों, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए दूध, अंडे, मछली, दाल, अनाज से बने खाने, चावल, खिचड़ी, दलिया इत्यादि, फल और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। साथ ही घी, तेल आवश्यकता अनुसार दे सकती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आयरन आवश्यक है। कहते हैं, एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है तथा वे अपने बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण एवं विकास कर सकती है। गर्भावस्था से ही माता एवं शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दोनों का जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल रहेगा। एक महिला जो माँ बनने वाली है, उन्हें इस दौरान पौष्टिक एवं संतुलित आहार मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुपोषण एवं अपर्याप्त पोषण दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए माँ बनने वाली महिला के आहार में दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दाल, सूखे मेवे आदि देने चाहिए। भ्रूण माता के रक्त से कैल्शियम शोषित कर अपनी आवश्यकता पूरी करता है, परंतु माता के शरीर में इसकी कमी होने से माता की अस्थियां एवं दांत कमजोर हो सकते हैं। इसलिए कैल्शियम युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए तथा कैल्शियम के शोषण के लिए विटामिन डी भी आवश्यक है। जब कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही होती है तो इस दौरान उन्हें तरल पदार्थ का खूब सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है। यथा संभव नूडल्स, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई, ठंडे पेय का सेवन कम करना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन, परिष्कृत मांस और सॉसेस कम चुने, खूब पानी पिए। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से माताओं में एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इनकी कमी से बच्चों में मृत जन्म, कम वजन, कमजोरी और विकास में देरी भी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में अनाज खाएं। चावल, पास्ता, ब्रेड से ऊर्जा और बी समूह के विटामिन प्राप्त होते हैं। साबुत अंकुरित अनाज विटामिन युक्त होते हैं। दिन भर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करके सक्रिय बने रहना, पर्याप्त नींद लेना, पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाकर रखना अच्छा है। यदि पोषण आहार संबंधी जानकारी महिलाओं के पास है तो वे अपने स्वयं को तथा बच्चे को मामूली सी हरी पत्ती वाली सब्जियों से, पालक के थोड़े से जूस से, सस्ते फलों से ही पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और स्वयं को, अपने बच्चों तथा पूरे परिवार को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रख सकती हैं। इसके लिए पोषण संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाए, इसमें स्थान विशेष के लोगों की भोजन शैली, भोजन संबंधी आदतें, परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ सेंटर या मातृ शिशु कल्याण केंद्र जैसे संगठन इस संबंध में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होती हैं। यह एक अच्छा अवसर है जहां महिलाओं को पोषण शिक्षा एवं इनके व्यवहारिक प्रदर्शन जैसे तरह तरह के फूड स्टॉल लगाकर जानकारी दी जाती है। अनचाही परंपराएं जो आहार से संबद्ध है तथा प्रत्येक समुदाय में गहरी जड़ जमाए हैं, उनसे मुक्ति महिलाओं को शिक्षित करके मिल सकती है।
5: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता बच्चों और माताओं का पोषण आहार। वार्ताकार थी देविका वर्मा। बहनों, 25 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भारत सरकार के सहयोग और प्रोत्साहन से हर साल मनाया जाने वाला 15 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता अभियान है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 1985 से भारत देश में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करना, मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना है। भारत में हर साल हजारों लोग कॉर्निया की वजह से होने वाले अंधेपन के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में अगर कोई मृत्यु के बाद स्वेच्छा से नेत्रदान करता है तो कई लोग आंखों की रोशनी पाकर जिंदगी की खूबसूरती को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। किसी की आंखों में रोशनी भर देना एक महापुण्य का काम होता है। नेत्रदान कर कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद भी किसी के काम आ सकता है। कॉर्निया की कमी के कारण कई लोग दृष्टिहीन रह जाते हैं, जिनके लिए इलाज संभव है उनकी दृष्टि लौटाई जा सकती है इसके माध्यम से। एक मृत दाता कॉर्नियल प्रत्यारोपण के माध्यम से अधिकतम 2 लोगों को आंखों की रोशनी प्रदान कर सकता है। नेत्रदान एक स्वैच्छिक कार्य है जिसमें मृत्यु के बाद कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया आंख की स्पष्ट पारदर्शी सामने की परत होती है, जो प्रकाश को प्रवेश करने और ठीक से केंद्रित करने में मदद करती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु या लिंग का हो नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले, डायबिटीज या रक्तचाप वाले, जो दवा लेकर सामान्य जीवन जीते हैं, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। यह एक महान कार्य है जो किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

काजल फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है इस गीत को।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आरोही फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और बेला सवेर की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दूर देश फिल्म से, उषा मंगेशकर और उषा खन्ना की आवाजें हैं।

हम बच्चे हिंदुस्तान के, आपने सुना इस फिल्म का गीत प्रीति सागर के आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:54 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
5: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

का विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन धन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। झारखंड में 22 परीक्षाएं रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षा रद्द करने पर रोक से किया इनकार। सरकार और JPSSC से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लेने की अपील की। धनबाद में साइबर सुरक्षा अभियान को दूरसंचार विभाग और IIT ISM का मिलेगा सहयोग। साइबर साथी बनकर 1 साल तक लोगों को जागरूक करेंगे छात्र। और मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और कोल्हान के जिलों में भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। राज्य में 22 परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने विज्ञापन संख्या 10/2025 के तहत सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार

0: और जेपीएससी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता रोमा कुमारी की ओर से दायर याचिका की जानकारी अधिवक्ता नीतेश्वरी कुमारी ने दी। याचिका में जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े मामले को अदालत के समक्ष उठाया गया है।
1: उनका जो सिलेक्शन हो रहा है दैट इज कम्प्लीटली बाय द गवर्नमेंट, वहाँ से शुरू हो रहा है। दैट्स वाई द पिटिशनर प्रेस फॉर इन दिस पिटिशन दैट कि एक हाई पावर सर्च कमेटी बनाया जाए जिसमें सीएम हो, नेता प्रतिपक्ष हो और सीनियर मोस्ट जज हो, वो डिसाइड करें कि वो चेयरमैन कब कौन बनेंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई, शुभकामनाएं और जोहार कहा है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास के साथ परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों को शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी से बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लेने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले में चलाए जा रहे विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और आईआईटी आईएसएम का सहयोग मिला है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि आईआईटी आईएसएम के प्रशिक्षित छात्र साइबर साथी के रूप में अगले एक वर्ष तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को साइबर ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा करने से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करेंगे।
2: रिक्रूट करते हैं और उनको ओरिएंटेशन देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उनको एनसीआरपी 1930 चक्षु पोर्टल और संचार साथी पोर्टल और बाकी सारा जितना भी डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल किया गया है वो सारा एरियाज में उनको ओरिएंटेशन दिया गया है ताकि पब्लिक तक ये लोग जाके अपना जागरूकता शुरू कर सकें।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनिज और खनिज पदार्थ विकास एवं विनियमन कानून यानी एमएमडीआर कानून को देश हित में बताया है। उन्होंने हेमंत सरकार और उनके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे एमएमडीआर कानून को लेकर राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं।
3: एक्ट आखिर सरकार ने क्यों लाई, उसके पीछे का कारण भी हमें समझना पड़ेगा। एक्ट सरकार ने इसलिए लाई केंद्र सरकार ने, क्योंकि राज्य सरकार अगर मनमानी तरीके से अपना जो कर उपकर जो लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से खनिज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और उसका नुकसान उसी राज्य को होगा और उस राज्य में जो उद्योग धंधे है वो भी प्रभावित होंगे।
0: नेपाल में आई बाढ़ के बाद पलामू के हैदरनगर प्रखंड के बरवाड़ी गांव निवासी 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा लापता हैं। महेंद्र नेपाल के बाणेश्वर जल विद्युत संयंत्र के निर्माण कार्य में फैब्रिकेटर के रूप में कार्य करते थे। बाढ़ वाले दिन उनका मोबाइल बंद है। परिजनों ने भारत सरकार, कंपनी और स्थानीय प्रशासन से महेंद्र का जल्द पता लगाने और सकुशल वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र के चपरी में छापेमारी कर 113.32 टन अवैध कोयला जब्त किया है। यह कार्रवाई कल की गई। इससे पहले भी सीआईएसएफ ने बड़का गांव के 3 गांवों में छापेमारी कर 250 टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया था। जब्त कोयले को एनटीपीसी के कांटा घर में वजन करने के बाद सुरक्षित रखा गया है। राज्य में अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। झारखंड में 22 परीक्षाएं रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षा रद्द करने पर रोक से किया इनकार। सरकार और जेपीएसएससी से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लेने की अपील की। धनबाद में साइबर सुरक्षा अभियान को दूरसंचार विभाग और आईआईटी आईएसएम का मिलेगा सहयोग। साइबर साथी बनकर 1 साल तक लोगों को जागरूक करेंगे छात्र। और मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और कोल्हान के जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे। इन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिला उद्यमियों को बधाई देते हुए कहे,
2: भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और महिला को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया है। उनका यह दृष्टिकोण है कि भारत की विकास यात्रा तभी व्यापक और समावेशित होगी जब गाँव, जनजातीय क्षेत्र, छोटे उद्यमियों और महिलाओं को प्रतिभा एवं क्षमता को अवसर मिलेगा।
1: हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में 50,000 से अधिक खिलाड़ी और नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 से अधिक टीम हिस्सा लेने की संभावना है। सांसद मनीष जायसवाल बताते हैं,
3: इस साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 50,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को मंच दें और साथ ही साथ नए नए गेम्स को भी और जोड़े। तो कुछ दूसरा उद्देश्य है कि फिटनेस का जो मूवमेंट है, फिट आदमी फिट रहे, मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे।
1: व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त को रामगढ़ जिले के नेमरा गाँव से हो चुकी है। यात्रा हजारीबाग पहुंचने पर छात्रों ने जोरदार स्वागत किया है। देवेंद्र नाथ महतो इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं,
4: ये इसमें घर घर के लोग भैया है, ये कोई झंडा का लड़ाई नहीं है, ये कोई बैनर की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं हजारीबाग का इस क्रांति का धरती यहाँ बहुत यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है। छात्रों पर FIR करना बंद करे, छात्रों को डराने का प्रयास न करे। अगर FIR करना है तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर करो, लेकिन कोई भी निर्दोष छात्र को FIR करके डराना का प्रयास मत करिए, ये बहुत गलत हो रहा है।
1: खंड पुलिस द्वारा गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान है। इस अभियान के तहत हजारीबाग पुलिस ने 65 मोबाइल फोन उनके असली मालिक तक पहुंचाया है। हजारीबाग SP अमन कुमार बताते हैं,
5: के लगातार अभी वर्तमान DGP मैम तलाशा मिश्रा मैम के नेतृत्व में भी पूरे राज्य में अभियान चलाया भी जा रहा है और हम लोग भी लगातार पिछले 3 महीने से अभियान चला रहे हैं और हर महीने ये अभियान चलेगा। वर्तमान में इस माह में कुल 65 मोबाइल बरामद किए गए हैं और कुछ मोबाइल परसों भी 25 तारीख को भी लोगों को दिया गया था जो आ पाए थे और बाकी कई लोग आज आए हैं, तो आज भी लगभग 40 के आसपास लोगों को मोबाइल वितरित किया गया है। अन्य मोबाइल कुछ लोग बाद में आके भी लेंगे जो कि हम लोग रखे हैं अपने पास। ये अभियान लगातार चलता रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी मोबाइल लोगों का खो रहा है या चोरी हो रहा है या छिनताई हो रहा है किसी भी तरीके से जा रहा है वो हम लोग

0: बरामद करें।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थी, शिक्षक, पदाधिकारी और खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना।
2: अभी 20 से ऐसी विधाएं थी पहले जिसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कमी थी, और अब ये कमी को पूरा किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग ज्यादा से ज्यादा विधाओं में जुड़े, तो काफी प्रेरणादायी था ये।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हजारीबाग के छात्र और खिलाड़ी उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
3: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:14 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन है माणिक चक्रवर्ती का, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: दोस्तों नमस्कार। किसी मैदान में अभी सीटी बजने वाली है, कहीं कोई खिलाड़ी अपनी अगली छलांग की तैयारी कर रहा है और कहीं कोई बच्चा बल्ला गेंद या फिर हॉकी स्टिक हाथ में लेकर एक सपना देख रहा है।
2: और शायद यही खेल की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन इरादे हमेशा बड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, खेल सिर्फ बड़े स्टेडियमों और चमचमाती ट्रॉफियों का नाम नहीं है दोस्तों। खेल तो उस सुबह का नाम है जब खिलाड़ी बाकी दुनिया से पहले उठकर अभ्यास के लिए निकल पड़ता है।
2: खेल उस कोशिश का नाम है जब हार के बाद भी खिलाड़ी कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मैदान में उतरेंगे।
1: तो आइए आज बात करेंगे खेल की, हजारीबाग के खिलाड़ियों की, नई प्रतिभाओं की और दुनिया भर के खेल मैदानों में हो रही हलचलों की।
2: मैं हूँ माणिक चक्रवर्ती।
1: और मैं हूँ राजीव कुमार।
2: और आप सुन रहे हैं साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम खेलेंगे शान से।
3: हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे, भाग तू ऐसे, तुझको रोक कोई भी ना सके।
1: और दोस्तों अब चलते हैं सीधे उस मैदान की ओर जहां इन दिनों खेल का उत्साह नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हजारीबाग में पिछले दिनों सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ है। इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस महोत्सव की रूपरेखा प्रेस वार्ता में सामने आई महत्वपूर्ण जानकारियों और प्रस्तावित खेल गतिविधियों पर एक एक जानकारी जुटाकर आप तक इसे पहुंचाने निकले हमारे सहयोगी माणिक चक्रवर्ती और ये रही उनकी ग्राउंड रिपोर्ट।
2: हजारीबाग में खेल का माहौल इन दिनों खासा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कल से 29, 30 और 31 तारीख को परमंडल स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन स्थानीय हजारीबाग स्टेडियम में होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सांसद खेल महोत्सव के आगाज को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में यह संदेश प्रमुखता से सामने आया कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि युवाओं की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का मंच देने वाला एक सशक्त माध्यम है। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाना और खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देना है। और सबसे बड़ी बात ये कि खिलाड़ियों को और युवाओं को नशे से दूर करके खेल से जोड़ना है। हजारीबाग के युवा खिलाड़ियों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्सुकता मिल रही है देखने को और आने वाले दिनों में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताओं के साथ मैदान में रौनक और भी बढ़ने की उम्मीद हो रही है। सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो चुका है और इसमें स्वयं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और 12 से ज्यादा खेलों का दमखम दिखने वाला है। आगाज हो चुका है और शुरुआत इसके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सांसद मनीष जायसवाल ने किया है ये खेल क्रांति का शंखनाद। सांसद मनीष जायसवाल लगातार दूसरी बार आयोजित कराने जा रहे हैं ये सांसद खेल महोत्सव। साल 2026 में करीब 50,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। अकेले फुटबॉल में 25,000 खिलाड़ियों का होगा महासमागम। युवाओं को खेल से जोड़ना समय की जरूरत है, ये पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी ने कही। सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता युवाओं को सही दिशा देने का महाअभियान भी है। तो सांसद की ओर से ये आगाज हो चुका है जो 25 दिसंबर तक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में चलता रहेगा और विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे गांव और शहर के हमारे खिलाड़ी। तो आइए क्या हुआ आज इस प्रेस वार्ता में, क्या बातें हुई और क्या कार्यक्रम हुए उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं।
4: हम लोगों ने सांसद खेल महोत्सव 2026 के एडिशन का आज हम लोगों ने यहाँ पर सिद्धि गणेश किया। ये टूर्नामेंट आज से चलेगा। इसका पहला मैच 30 तारीख को फुटबॉल का होगा जो की दारू प्रखंड से शुरू।

0: बस होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक टीजर, एक छोटा सा फिल्म देखा होगा, आपके स्क्रीन पर आया था। 2016 तक से के आगे से इस खेल प्रतियोगिता का जो है इतिहास क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें 40,000 से ज्यादा खिलाड़ी अलग अलग गेम्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। और इस साल हम लोग उम्मीद करेंगे कि लगभग 13 से 15 खेलों का समायोजन इसमें हो और कुल खिलाड़ियों की संख्या 50,000 से अधिक हो। मैं बस इतना ही आह्वान करके आपसे कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता को और इस सांसद खेल महोत्सव को गांव गांव तक, टोले टोले तक पेनिट्रेट करवाने का कष्ट करें। एक एक गांव से जो खिलाड़ी है, एक टोला से जो खिलाड़ी है, उसको चिन्हित करके ऊपर लाने का अगर आप काम करेंगे तो विश्वास जानिएगा कि एक टूर्नामेंट को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके इस मुहिम में आप न केवल उस खेल को प्रमोट करेंगे बल्कि आप दो भाव को और भी जागृत करने का काम करेंगे। पहला, सरकार के द्वारा आप जो चलाया जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट, ये बड़ा कहावत है कि जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपके अंदर फिटनेस नहीं है तो आप विश्वास जानिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार खेलो इंडिया मूवमेंट का भी जो है प्रचार और प्रसार कर रही है। आज हम लोग ओलंपिक में हम आबादी के अनुसार पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हो सकता पहले नंबर पर भी चले जाएं, लेकिन अगर हम लोग स्पोर्ट्स के मामले में देखें, ओलंपिक में देखें, तो जितने गेम ओलंपिक में खेले जाते हैं उन सभी में आज हम कहीं पर भी अपनी गणना बहुत ज्यादा गिनवा नहीं सकते। आपको पता है कि भारतवर्ष ने 2036 की जो ओलंपिक गेम है उसका दावेदारी किया है और हमको उम्मीद है कि ये दावेदारी हम लोगों को मिलेगा भी। तो केवल हम मेजबानी ही नहीं करें, हम अपने युवाओं को तैयार करें कि जब खेल यहाँ पर हो तो हम उन खेलों में जीते भी और विश्व में अपना दबदबा कायम करें, ये भी हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति आपके माध्यम से होना चाहिए। खेल समाज सुधार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज नशाखोरी और युवाओं को भटकने का खेल में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हम लोगों को देखने को मिलता है।
1: धन्यवाद सांसद महोदय, युवाओं का चरित्र निर्माण का प्लेटफॉर्म देने के लिए। अब आपके बीच झारखंड सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उन्हें स्थानियों के स्वागत से आप उन्हें यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस महोत्सव का आगाज ही नहीं प्रतीक्षा होता है, फिर से जब शुरू हुआ अभी चालू हो गया हजारीबाग में, उसके लिए सांसद को और आप सबको

0: जो खेलेगा वो आगे जीवन में प्रॉस्पर करेगा, इस उद्देश्य को भी हम लोग समाज के बीच में ले जाना चाहते हैं। और अपने खिलाड़ियों को हर एक मैच के पहले हम अपने खिलाड़ियों को जो है नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हैं कि न तो आप नशा करेंगे न अपने अगल बगल में नशा होने देंगे। अब लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में कम से कम एक ग्राउंड जो है अच्छे लेवल का हो जाए, और साथ ही साथ हम लोग का ये प्रयास है कि हर एक गेम का जिला लेवल पर एक जो है एक अच्छा सेंटर हम लोग बनवा सके। जैसे आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, बैडमिंटन का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, लॉन टेनिस का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, अभी स्केटिंग का एक रिंग भी झील में बना है, आने वाले समय में कबड्डी के लिए, शूटिंग के लिए, आर्चरी के लिए, इन सब स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो प्रयास जारी है कि लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय स्थापित।
1: और अब जूनियर खिलाड़ियों के लिए
2: आज का खेल मंत्र। ये है आज के छह खेल मंत्र।
1: मंत्र नंबर एक, रोज अभ्यास करें और नियमितता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।
2: मंत्र नंबर दो, हार मिलने पर निराश नहीं बल्कि अपनी गलती से सीखने की आदत डालिए।
1: मंत्र नंबर तीन, अपने कोच और ट्रेनर की बात ध्यान से सुनिए, अनुभव अक्सर वही सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा पाती।
2: मंत्र नंबर चार, खेल के साथ पढ़ाई का भी संतुलन बनाए रखिए, एक अनुशासित खिलाड़ी मैदान के बाहर भी जिम्मेदार ही होता है।
1: मंत्र नंबर पाँच, टीम में खेल रहे हैं तो अपने साथी की सफलता को भी अपनी सफलता मानिए, अपनी सफलता समझिए।
2: और मंत्र नंबर छह, किसी बड़े खिलाड़ी की नकल करने से पहले अपने भीतर के खिलाड़ी को पहचानिए, आपकी अपनी शैली ही आपकी पहचान बन सकती है।
1: तो दोस्तों, ये था आज का खेल मंत्र।
2: और अब ये है हमारे सीनियर खिलाड़ियों का सेगमेंट, सुनो खिलाड़ियों।

0: सुनो खिलाड़ियों, अनुभव को अपनी ताकत बनाकर सीखने की इच्छा हमेशा अपने मन में रखिए।
1: सुनो खिलाड़ियों, अपनी फिटनेस, रिकवरी और अनुशासन को प्रशिक्षण का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानिए जितना अभ्यास को मानते हैं।
0: दबाव के क्षणों में भावनाओं से नहीं रणनीति से खेलिए।
1: युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए।
0: जीत का जश्न मनाइए, लेकिन हार और जीत दोनों के बाद अगली चुनौती के लिए तैयार रहिए।
1: खिलाड़ियों के लिए हमारा अगला सेगमेंट
0: खेल टिप्स।

0: मैच शुरू होने से पहले अपने उपकरण और जरूरी सामान की एक बार जांच जरूर करें।
1: खेल के दौरान जल्दीबाजी में फैसला लेने के बजाय एक पल स्थिति को पढ़ने की आदत डालें।
0: विरोधी खिलाड़ी की ताकत के साथ साथ उसकी खेल शैली को भी ध्यान से समझें।
1: मैदान में रेफरी या अंपायर के फैसले पर बहस में समय और ध्यान बर्बाद न करें।
0: मैच खत्म होते ही मोबाइल में उलझने के बजाय खिलाड़ियों कुछ मिनट शांत होकर अपने प्रदर्शन को महसूस करें।
1: और दोस्तों, अब समय है दुनिया भर के खेल मैदानों से मुख्य अपडेट्स पाने का। यह है हमारा आखिरी सेगमेंट,
2: खेल अपडेट्स।
0: खेल अपडेट्स की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह, खेल की दुनिया अब इंसानों से आगे रोबोटों तक पहुंच गई है। जी हां, चीन के बीजिंग में हुए वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोटों ने जिम्नास्टिक, फुटबॉल और दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं टैंगोंग अल्ट्रा नाम के रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 8.64 सेकंड में पूरी कर तहलका मचा दिया। यानी आने वाले समय में खेल और तकनीक का यह संगम हमें बहुत कुछ नया दिखाने वाला है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 16 खेल शामिल हो गए हैं, 10 सामान्य खेल और 6 एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स। भारत 13 खेलों में हिस्सा लेगा। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबला ड्रॉ करा लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि इस मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट जीता, यानी मैच का रोमांच और संघर्ष सबसे बड़ी बात रही। जब 5000 से भी ज्यादा स्थानों पर युवा खेल की बात करने के लिए साथ आए तो देश भर में एक नई ऊर्जा दिखाई दी। आज खेलो इंडिया डायलॉग

0: खेल की बात पीएम मोदी के साथ, युवाओं की भागीदारी और खेल के प्रति उनके जुनून का सशक्त मंच बना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और खेल सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया।
1: तो दोस्तों, आज के खेलेंगे शाम से इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
0: चलते चलते याद रखिए, मैदान में पसीना बहाते रहिए, हर चुनौती से टकराते रहिए, जीत मिले तो विनम्र रहिए, हार मिले तो मुस्कुराते रहिए,
1: क्योंकि हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी जीत की पहचान बाकी है। जो गिरकर फिर संभल जाए मैदान में, उसी खिलाड़ी की असली शान बाकी है।

0: मैं हूँ माणिक चक्रवर्ती
1: और मैं हूँ राजीव कुमार। फिर मिलेंगे खेल जगत की नई हलचलों, खबरों और नए उत्साह के साथ। तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शुक्रवार शाम हमारे साथ कहते रहिए,
0: खेलेंगे शाम से। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन था माणिक चक्रवर्ती का। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म इम्तिहान में। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमजोली से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सावन माह के पावन अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी हैं मौमिता मल्लिक, रत्ना चटर्जी और निरुपमा दुबे, और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी हजारीबाग से सावन के शुभ अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। सावन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन के आकाश पर जाने कितने रंग उतर आते हैं। कहीं काले काले बादलों की घटा है, कहीं रिमझिम फुहारों की मधुर रुंझुन, कहीं धरती की प्यास बुझाती बारिश है, तो कहीं हरी भरी डालियों पर झूलता सावन है। सावन केवल प्रकृति के भींगने का मौसम नहीं, यह मन के भींगने, भावनाओं के जागने और श्रृंगार के रंगों में रंग जाने का मौसम भी है। हाथों में रची मेहंदी, खनकती हरी चूड़ियां, 16 श्रृंगार की सुगंध, सावन के झूले, सावन के गीत, मानो प्रकृति ने स्वयं हरे रंग की साड़ी पहनकर धरती का श्रृंगार कर दिया हो। इसलिए तो सावन में बादल भी गीत गाते हैं, बूंदे भी कविताएं लिखती हैं और हरियाली भी मुस्कुराती है। तो आइए, आज के इस सावन विशेष कार्यक्रम में हम सब मिलकर उस सावन को महसूस करें जो कभी बादल बनकर आता है, कभी फुहार बनकर, कभी याद बनकर और कभी किसी अधूरे गीत की तरह मन में ठहर जाता है। आज का यह काव्य आयोजन उसी सावन को समर्पित है जिसे शब्दों में हम महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों को आवाज देने के लिए आज हमारे साथ है हजारीबाग शहर की 3 सशक्त कवित्रियां, श्रीमती रत्ना चटर्जी,
1: नमस्कार,
0: निरुपमा दुबे और मैं मौमिता मल्लिक। 3 आवाजें, 3 संवेदनाएं और सावन के अनगिनत रंग। तो आइए इस काव्य सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कोई बादल मन में उतरता है, कभी कोई बूंद कोई बात कह जाती है और कभी बारिश की एक रात अनायास ही कविता बन जाती है। इसी अनुभूति से जन्मी मेरी स्वरचित कविता बादल। बादल दिल की आरजू है, मित्र बन जाऊं तुम्हारी, मन हल्का करें तुम और हम। कभी तुम अपने मन के छंदों को छूकर तपती धरती के सीने में अश्रु प्लावित करो, तो कभी मैं जलकणों को कलम रूपी स्याही में भिंगोकर कविता का गीत रचूं। बहुत मेल है बादल तुझ में और मुझ में, अब जल्दी आओ बरस जाओ शब्द बनकर, जिसे पिरोकर भरी कटोरी फैला दूं अपनी कविताओं की गठरी। ओ बादल, सुनती हूं मैं अनिवार्य पुकार, अब देर न करो जल्दी आओ तुम अब की बार। सावन का अर्थ केवल सावन की सुंदरता को शब्दों में बांधना आसान नहीं, लेकिन जब संवेदनशील मन प्रकृति को देखता है तो शब्द अपने आप कविता बन जाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी प्यारी रत्ना दीदी को कि वो अपनी काव्य प्रस्तुति दे।
1: धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है हजारीबाग में सावन आया। देखो हरियाली के इस सावन में पूरा हजारीबाग डूब गया, सावन के आया मानो हरियाली का महाकुंभ आया। वर्षा की बूंद बूंद में मानो सावन स्वयं खो गया, वर्षा की बूंद बूंद में मानो सावन स्वयं खो गया, प्रकृति की हरियाली में देखो सावन स्वयं ढल गया। सावन की पहली बूंद जो बरसी तो सोंधी हो गई पद्मा दारू कटकम सांडी की सुंदर माटी। सावन की पहली बूंद जो बरसी तो सोंधी हो गई पद्मा दारू कटकम सांडी की सुंदर माटी, झूम उठा हरियाली से संग संग चरही घाटी। तपस्या पूर्ण हुई धरा की, सोमेश्वर का अभिषेक हुआ, तपस्या पूर्ण हुई धरा की, सोमेश्वर का अभिषेक हुआ। देखो इस सावन की पावन बेला में भाई बहन का स्नेह खिला, भाई की कलाई पर बांधती बहना राखी, भाई की कलाई पर बांधती बहना राखी, संस्कृति के पावन पर्व से धन्य आज हजारीबाग की माटी। कनेरी पहाड़ के उच्च शिखर से बम बम भोले का नाद सुना, कनेरी पहाड़ के उच्च शिखर से बम बम भोले का नाद सुना, इचाक चुरचू की बगिया में आज हमने कजरी का तान सुना। हाथों में मेहंदी की लाली, संग में पहनी साड़ी धानी, हाथों में मेहंदी की लाली, संग में पहनी साड़ी धानी, झूला संग झूल रही गाती मल्हार, हरी चूड़ियों की झनकार। आज सावन ने कर दिया श्रृंगार और प्रकृति को एकाकार। अंबर में बजे मेघ मृदंग, अंबर में बजे मेघ मृदंग, हवाओं ने छेड़ दी बांसुरी, ढोल नगाड़ा मांदर संग कजरी गाए प्रकृति। खोरठा नागपुरी के स्वर में हरित भरित यह धरती, खोरठा नागपुरी के स्वर में हरित भरित यह धरती, सौंधी हवा हर ओर महके, सावन सुंदर गरजे बरसे, सावन सुंदर गरजे बरसे, सावन सुंदर छमछम बरसे, सावन की काव्यमयी रसधार बही, सावन की काव्यमयी रसधार बही, चहु दिशा दादुर मोर पपीहा बोले, सावन धन्य सावन बरसो सावन। हजारीबाग पुकारे बार बार, अगली बार जरा जल्दी आना सावन, अगली बार जरा जल्दी आना सावन।
0: वाह, इतना खूबसूरत हजारीबाग की वादियों में जो सावन की छटा है वो तो देखने लायक ही है। सावन की ये इन पंक्तियों ने जैसे हमारे मन के आंगन को भी हरियाली से बिखेर दिया। बहुत सुंदर ये प्रस्तुति थी रत्नादी का। प्रकृति जब कविता बनकर उतरती है तो शब्द सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। अब मैं निरुपमा दुबे जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी काव्य प्रस्तुति दे।
1: मेरी कविता का शीर्षक है सावन गीत।

मिटी हूँ, सुगंध से तो मेरा तन मन है जगमगाया। भरे ताल और तलैया भींगे कमल तोड़ती हूँ, कोई नशा ना है मुझको नशे में झूमती हूँ, कोई नशा ना है मुझको नशे में झूमती हूँ। अमरूद की खुशबू से मदहोश है जो तोते, अमरूद

0: बहुत सुंदर निरुपमा दुबे जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मौसम नहीं, मन तय करता है कि बारिश कब होगी। कुछ बूंदे बादलों से नहीं, भीतर की भावनाओं से बरसती है। और इन्हीं भावनाओं को उकेरते मेरी अगली प्रस्तुति, कविता का शीर्षक है बेमौसम बारिश। क्योंकि यह बेमौसम बारिश सिर्फ भटकते हुए शब्दों का गुच्छा भर है। ये तुम्हारा बेमौसम आना बस पीड़ाए है मेरी, जो तुम्हारे सारे जिए हुए को सामने लाकर खड़ा कर देता है। ऐ बेमौसम की बारिश, कितनी नाटकीयता है ना तुम में। जैसे पहले कोई गलतियां करें, फिर बारिश की बूंदे बनकर सारी गलतियों को धुलाने की कोशिश करें, पर ऐसी बारिश में कुछ भी नहीं धुलता। बस कोसती हुई, सुस्ताती हुई बहानों की तरह बहुत सारी लंबी चुप्पियां सुनाकर चली जाती है। ऐ बेमौसम की बारिश, मत आना बेमौसम बनकर, क्योंकि गूंगी अभिव्यक्तियां फिर से बातों नहीं हो रही है। कुछ रास्ते जो पिछली बारिश में तुम्हारे साथ क्षणिक चलने से हरियाली दिखने लगे थे, अब तुम्हारे यूं बेमौसम लौटने पर भी धुसर ही बनी हुई है। ऐ बेमौसम की बारिश, यूं बेमौसम मत आना। तुम्हारी इन बूंदों से मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, भगोरे की गंध मिलती है मुझे। सावन का अर्थ है धरती का फिर से हरा हो जाना, नदियों का खिल उठना, पेड़ों की डालियों का झूमना और प्रकृति का अपने पूरे यौवन में लौट आना। एक बार पुनः आमंत्रित करूंगी रत्ना दी को कि वो अपनी मधुर कंठ से अपनी कविता की प्रस्तुति करें।
1: मेरी दूसरी कविता है सावन और नारी। आकाश के आंगन में जब घटा घनेरी छाती है, आकाश के आंगन में जब घटा घनेरी छाती है, सावन सजकर आता है, नारी भी 16 श्रृंगार करती है। सावन हरियाली ओढ़कर सुंदर धानी साड़ी, शिवालय में जल अर्पित करती हरे वेश में नारी। सावन और नारी का एक ही रूप, सावन और नारी का एक ही रूप, सींचे दुख ताप, शीतल करे मन, हरे सब धूप। सृजन की शक्ति ममता की अविरल धारा, सृजन की शक्ति ममता की अविरल धारा, सावन भी हर ले गया पृथ्वी से दुख सारा। मस्तक पर सिंदूर, माथे पे टिकली, आंखों में कजरा। सावन भी पावन हरियाली से, पवित्रता से भरे जग सारा। सावन बंजर में अंकुर उगा दे, निराशे मन को भी हर्षा दे, नारी भी सावन की फुहार सी कोमल पावन। सावन भी नारी की फुहार सी कोमल पावन, महका दे त्याग समर्पण से जीवन आंगन। जैसे मेघ बिन सावन अधूरा, वैसे ही नारी बिन संसार अधूरा। सावन सा निश्चल, सावन सा पावन, सावन सा निश्चल, सावन सा पावन, ममत्व स्नेह से पूरित, महकाए जीवन का आंगन, महका दे जीवन का आंगन।
0: वाह, सावन की फुहारे तन को ही नहीं भिंगोती, वे मन के किसी कोने में छिपी यादों को भी जगा देती है। इतनी सुंदर अनुभूति हमारे साथ साझा करने के लिए रत्ना दी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी निरुपमा दुबे जी को कि वो अपनी प्रस्तुति दे।
2: मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सावन की बदरिया। गर्माहट की तपस में छुप छुप कर, गर्माहट की तपस में छुप छुप कर, सावन की बदरिया जाग उठी। काली काली सुंदर आभा सावन में फिर साज उठी। छुपी हुई कलियां भी उठकर डालों पर श्रृंगार उठी। अलसाए पौधे और डाली में हरियाली सुख साज उठी। गर्माहट की तपस में छुप छुप कर सावन की बदरिया जाग उठी। सजे बाग के नव पल्लव गण सावन हरियाली विकसात उठी। पर्वत के रुए सूख रही थी, पड़ी बूंद वह जाग उठी। दी जो दस्तक सावन ने आकर, तपन तपस भी भाग उठी। गर्माहट के तपस से छुप छुप कर सावन की बदरिया जाग उठी। नभ पर असंख्य कलश लिए सावन घन, नभ पर असंख्य कलश लिए सावन घन। बरखा की मदिरा जाग उठी, श्यामल वर्ण छविले नीलांबर, कामिन सुंदरता जाग उठी। कांधे कुदाल हल दल के संग कृषि कर्मणा जाग उठी। गर्माहट की तपस में छुप छुप कर सावन की बदरिया जाग उठी। मंद मंद शीतल पवन सावन में, प्रकृति प्रवृति सुख साज उठी। हर्षित हो उठे सारे वन उपवन, विपुल अभिलाषा जाग उठी। चहक उठे जो मयूरा भी वन में, वन की शोभा जाग उठी। गर्माहट की तपस में छुप छुप कर सावन की बदरिया जाग उठी। खिल उठे बाग के नव कोपल, घनघोर हरियाली फिर साज उठी। झरझर गिरती झरने की धारा, झरझर गिरती झरने की धारा, पहाड़ों की शोभा हर्षात उठी। गिरते चहुदिश नव से बूंदे कवि हृदय उल्लास उठी। गर्माहट के तपस में छुप छुप कर सावन की बदरिया जाग उठी। ऐसे घूमण रही घटा ये काली जैसे नभ के लट गुंगरे विकसात उठी। अति मन भावन सावन घन आवन, बादल की बुजुरिया लहरात उठी। बड़ी कामिन बरसात की शोभा उन्नत अभिलाषा आगाज उठी। गर्माहट के तपस में छुप छुप कर सावन की बदरिया जाग उठी।
0: बहुत सुंदर। सावन हमें एक मधुर संदेश भी देता है कि प्रकृति को जितना सहजेंगे, प्रकृति हमें उतना ही जीवन देंगी। इस सावन को हम यदि वृक्षारोपण कर उन्हें संरक्षण प्रदान करें और प्रकृति का सम्मान करें, तभी ये सावन सार्थक कहलाएगा। और इसी सावन को सहेजते हुए मेरी अगली प्रस्तुति है, जिसका शीर्षक है वर्षा भींगी रात। कहा जाता है कि सावन की रात जब बारिश की बूंदों से भींगती है तो लगता है जैसे प्रकृति चांदनी के आंचल में कोई मधुर गीत लिख रही हो। और ऐसी ही भींगी रात की कविता जहां यादें भी बरसती है। कविता का शीर्षक है वर्षा भींगी रात। पावस से धुले नव के नीचे मंद मंद बयार, सपनों की एक नई सी नैया धीरे धीरे बहती इस पार। रिमझिम बूंदों की सरगम पर आज की रात अलबेली है, श्यामल सा चांद ओढ़े जैसे धरती पर उतरी कोई काली परी है। भींगे भींगे पत्तों पर अब भी मोती से जलकन ठहरे हुए, माटी की सोंधी सी खुशबू में कल के मधुर संगीत लिए। मन के गहरे सूनेपन में जो अनकहा सा शून्य बसा था, झंझा के कोमल स्पर्श ने आकर जीवन में हरियाली रचा था। सुखी रहो तुम, सदा मुस्काओ, बस इतनी सी मेरी अभिलाषा, जब कल का सूरज मुस्काए याद रखना मेरी ये भाषा। कहा जाता है कि बारिश का अपना एक मौसम होता है, लेकिन भावनाओं का क्या कोई मौसम होता है? कभी कभी मन के भीतर ऐसा बादल उमड़ता है कि बूंदे मौसम देखकर नहीं एहसासों के साथ बरसती है। आमंत्रित करूंगी रत्ना दी को कि वो अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद मोमिता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कहां वह सावन। जो आज की पीढ़ी जो सावन से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए मैंने कविता को
0: बहुत सुंदर सुनाई।
1: तो शुरू करती हूँ जी। कहां वह सावन, सुनो सुनो कहां हो तुम, देखो सावन आ गया, पर कहां तुम्हारी वो कजरी जो खेतों में झूलों में बैठकर गाती थी दादी नानी हमारी। कहां वो मांदर की थाप, कहां वो ढोलक की ताक धिन ताक, क्यों रूठे हो सावन से? देखो सावन ने फिर से पुकारा है। क्यों रूठे हो सावन से? देखो सावन ने फिर से पुकारा है। क्या अब ना बोलोगे काले मेघा पानी दे? अब ना नाचोगे खेतों पर ताक धिन धिन ताक ताक? अब कोई क्यों नहीं गाता? क्यों खेत गूंगी है? क्यों अमराई जहां दिन भर झूलते नर नारी आज है पराई? सावन पूछता शहर आकर मेरा साज कहाँ है? सावन पूछता शहर आकर मेरा साज कहाँ है? वो तुम्हारा संगीत कहाँ है? कहाँ मेरी वह दादी जो गाती मल्हार कजरी? आओ गीत गाओ, सावन को बरसने दो, नेह को पनपने दो, माटी को मांगने दो। मत रखो प्रकृति से दूर, मत रहो प्रकृति से दूर, मत जाओ डिजिटल की दुनिया में, बाहर आओ सावन संग झूमो झूलो, देखो सावनी रंग में जिंदगी रंग कर। शहर वालों मैं सावन हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा आलिंगन करो तुम हरियाली से भर जाओगे। इतने हतोत्साहित क्यों? पहचानो अपनी शक्ति, अपने अंदर के सावन को जागृत करो। सावन अर्थात शिव की शक्ति, सावन अर्थात भारत की संस्कृति, सावन अर्थात संपूर्ण प्रकृति। सावन उत्साह, सावन प्रेरणा, यह बस एक ऋतु नहीं, यह तो महाशक्ति है। यह बस एक ऋतु नहीं, यह तो महाशक्ति है। सूखे बंजर मन में आशा के फूल खिला दे, यह सावन की शक्ति है। आओ फिर से कजरी मल्हार गाएं, आओ फिर से कजरी मल्हार गाएं, सावन के हर बूंद से पुनः भारतीय संस्कृति का गौरव जग में भर दे। छोड़ो यह स्क्रीन की दुनिया, नीली रोशनी का संसार, देखो बाहर पुकार रहा सावन।

0: का पावन त्योहार। इस सावन हर बच्चे के हृदय में निज भारत जीवित हो जाए, इस सावन हर बच्चे के हृदय में निज भारत जीवित हो जाए। आओ सावन बरसो सावन, आओ सावन बरसो सावन।
1: वाह बहुत खूब, सावन की इन पंक्तियों ने जैसे हमारे मन के आंगन में भी हरियाली बिखेर दी। प्रकृति का यूं आपके कविताओं में जुड़ना जैसे लग रहा है कि शब्द सीधे हृदय तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना दी को। एक बार पुनः आतुर हैं हम सभी निरुपमा दुबे जी का कविता पाठ सुनने के लिए और आग्रह करूंगी आप अपनी कविता का पाठ करें। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है सावन की यादें। आ जाती जब सावन की बूंदे, आ जाती जब सावन की बूंदे, बचपन की वो याद लिए, बीते पल में उन लम्हों की यादों का आगाज लिए। सावन ने भींगी मिट्टी की खुशबू हाथों में उनके हाथ दिए, बड़े बड़े पाँव के पगडंडी का नन्हे कदमों ने बाबूजी का साथ दिए। आ जाती जब सावन की बूंदे, बचपन की वो याद लिए, पहुंच ही जाती गीली खेतों में, पहुंच ही जाते गीली खेतों में सावन की बरसात लिए, भींगी धानों की हरी फसल किसानों ने थे हाथ लिए, वो भी थे सावन में भींगे हर्षों और उल्लास लिए। आ जाती जब सावन की बूंदे, बचपन की वो याद लिए, ऊंचे स्वर में गीत वो गाते, ऊंचे स्वर में गीत वो गाते, बिन ढोल बिन साज लिए, ठेठ वो मीठी गीत सुहानी, क्षेत्रीय शब्दों का सार लिए, हम भी उनके संग खोकर गाते, देखो शुभ घन आयो रे सजनी, सावन झर है साथ लिए, सावन झर है साथ लिए, खेतों में बहती सरसर जलधारा, खेतों में बहती सरसर जलधारा, मिट्टी की खुशबू साथ लिए, झूम ही उठते ये कृषक गण, उन्नत फसलों का आस लिए। आ जाती सावन की बूंदे, बचपन की वो याद लिए, आ जाती सावन की बूंदे, बचपन की वो याद लिए, बचपन की वो याद लिए। धन्यवाद।
2: तो श्रोतागण, आज हमने सावन को कई रूपों में महसूस किया। कभी वो बादल बनकर आया, कभी बारिश की बूंद बनकर, कभी हरी भरी धरती बनकर, कभी चूड़ियों की खनक बनकर, और कभी कविता बनकर हमारे मन में उतर गया। सावन हमें सिखाता है जीवन में चाहे कितनी भी तपिश क्यों न हो, उम्मीद के बादल एक दिन जरूर आते हैं। इन्हीं भींगी भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी कवित्रियों का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सावन माह के पावन अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी थी मौमिता मलिक, रत्ना चटर्जी और निरुपमा दुबे, और इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 8:27 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

आपकी चाहत कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, आज है राखी का त्योहार। भाई बहन के अटूट

प्रेम का अनोखा त्योहार। आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज है रक्षाबंधन, तो आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है रक्षाबंधन के गीतों को। पहला गीत सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर, आप हैं मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू, भोला, उनके मम्मी पापा और बहुत सारे दोस्त। दिल्ली शहर मोरी गेट से आप है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बेरडी से आप है हुकुम करम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु। हजारीबाग पतरातू से आप हैं बेसिल खलको, मधुरी, तू, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं रेशम की डोरी फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने।

से आप हैं महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, पिंटू कुमार और कुमारी वर्षा। मालीटोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। रांची से आप हैं वीर शंकर, आकाश, सतीश, मीनू, मीका और उनके बहुत सारे दोस्त। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फरिश्ते फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और मोहम्मद अजीज ने।

श्रोताओं, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो लिख भेजिए अपने पसंद के गीत हमारे इस छोटे से पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी चाहत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड है 825301।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ढोंगी का गीत। किशोर कुमार की आवाज में इस गीत की फरमाइश भेजी है ओल्ड लिसनर ग्रुप बरकाकाना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। आप हैं रातुराज रांची से सचिदानंद दुबे, नटवर कुमार दिवाकर और सत्यम सावरिया। ये खत भेजा है मटवारी हजारीबाग से अमित चटर्जी, करुणा चटर्जी, जय चटर्जी और बोनी चटर्जी ने।

चार संध्या का आज का अंक रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:44 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाज

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर यह हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स

0: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनाक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
6: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
7: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 180 4747 के माध्यम से भेजे

0: जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
3: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 3री उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: इस नए दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषिदा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषिदा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। तो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुरी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: रिशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में रिशिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने रिशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में रिशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत,
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के सफर में। कार्यक्रम है रजनीगंधा। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं दो रास्ते फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म कॉल गर्ल में। इस गीत को लिखा नक्श लियालपुरी ने और संगीत दिया जगमोहन बख्शी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म रूप तेरा मस्ताना में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा आनंद बख्शी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लिबास फिल्म से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को फिर फिल्म शर्मीली में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से में। हमारी आज की फिल्म है अर्पण, जो जे ओम प्रकाश के निर्देशन में यह फिल्म बनी थी 1983 में। फिल्म के लिए संवाद लिखा रमेश पंत ने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

0: मुझसे नाराज हो गया?
1: फिल्म युग प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी थी यह फिल्म। मुख्य भूमिकाएं निभाई जितेंद्र, राज बब्बर, रीना रॉय और परवीन बॉबी ने। फिल्म अर्पण के लिए संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, सभी गीतों को आवाजें दी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अनवर और सुरेश वाडकर ने।
0: मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।

0: ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना। इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
1: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहाँ की कोई लड़की फिदा हो गई तो
0: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
1: जलन नहीं होगी?
0: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी।
1: शोभा,

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:59 हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बड़ी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे

0: जा सकते हैं।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said both Indian embassies in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, tomorrow. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan